0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: भजन में इतना प्रभाव है, आप सच्ची मानिए कि बड़े से बड़े दुख को सहने की सामर्थ्य आ जाती है। कोई भी भजनानंदी दुखों को मिटाता नहीं है, क्योंकि जानता है इसको भोग लेते हैं और भजन का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करते हैं। देखो, पैसा है उसे चाहे जहां खर्चा कर लो, ऐसे भजन है। अगर आप मान लो, आप चाहें कि हमारी किडनी ठीक हो जाए, ठीक हो जाएगी, लेकिन एक जगह कनेक्शन कट जाएगा, जो भगवान की प्राप्ति है, जो भगवान का रस है, उसमें बाधा लग जाएगी, क्योंकि वो पैसा इधर खर्चा हो गया ना। अच्छा, ये कितने दिन चलेगा? एक नियत श्वास है, उतने ही दिन चलेगा। तो हम विवेक के द्वारा आए हुए कष्टों को सहले और भजन का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए करें। जो अनंत जन्मों से हम सुख चाह रहे ना, वो भगवत प्राप्ति ही है। एक बार जहां भगवत साक्षात्कार हुआ, कृतकृत हो जाता है जीव, आनंद मगन हो जाता है। जैसे जन्म जन्मांतरों से हम सुख खोज रहे हैं, लेकिन देखो कहीं हमको तृप्ति नहीं मिल रही, क्योंकि यहां वो है नहीं, वो यहां है अपने अंदर हृदय में। और जहां उसका साक्षात्कार हुआ, बस फिर कृतकृत हो जाता है जी। अब वो चीज ऐसी तो है नहीं कि बता सके आनंद का। जैसे बोले कितना आनंद है, बोले बहुत। अरे मानो हम आपको एक मीठा खवाया, गुलाब जामुन खवाया, कैसा है? बोले मीठा है। एक कैसा मीठा है? बोले बहुत मीठा है। एक बहुत मीठा कैसा है? बोले गुलाब जामुन खा के देख ले, फिर नहीं आएगा। अनुभव गम्य भजे जय संता। बोले भजन में कैसा आनंद? बोले बहुत आनंद। बोले नहीं बहुत आनंद कैसा? बोले करके देख लो, क्योंकि अनुभव है। अब जवान की ताकत तो थोड़ा ही वर्णन करने के, एक प्राकृतिक आनंद को एक सीमा तक बोल सकती। बोले कैसा? बोले मीठा है। बोले कैसा मीठा? बोले बहुत मीठा है। नहीं बहुत मीठा कैसा आनंद है? बोले खा के देख लो, इसके आगे नहीं बोल सकते आप। तो भगवदानंद कैसे कोई बोल सकता है कि कितना है कैसा है? वो तो अनुभव गम्य है। इसलिए नाम जप करो, बहुत आनंद का विषय है। जिसे हम पूजा कहते हैं, अगरबत्ती आरती भगवान के सामने सब करना, और एक होता है कर्म सांसारिक, अपने कर्मों का। जैसे किसान अपना कर्म करता है, व्यापारी अपना कर्म करता है, ये दोनों का महत्व नहीं। हम उसमें महत्व देते किसके लिए कर रहे हो, बस इसका महत्व होता है। जैसे आप अभी बताया ना आपको कि पीछे वाले बैच में एक ने कहा भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन वो सब करते हैं, हाँ तो मतलब उनके ऊपर असर नहीं ना, तो बेकार हुई ना उनकी पूजा। एक आदमी संसार के सारे कार्य करता है, शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, और बहुत अच्छे मेहनत से कार्य करता है, बेकार हो गया ना। आपका उद्देश्य क्या है पूजा करने का, और आपका उद्देश्य क्या है कर्म करने का। कर्म और पूजा खास बात नहीं, आपका उद्देश्य खास बात है। हम भगवत आराधना से बल प्राप्त करते हैं दोषों के त्याग के लिए, बहुत सुंदर बात। और हम जो कर्म करते हैं उससे जो हमें अर्थ प्राप्त होता है, उससे हम अपने परिवार की, अपने समाज की सेवा करते हैं। यही भाव तो आपका है, ये दोनों बराबर है। जो एक आदमी बैठ करके माला जप करता है, और एक आदमी फावड़ा उठाकर राम राम राम हर फावड़े पे भगवान का नाम जप करते हुए करता है, और एक आदमी एकांत में बैठे माला जप कर रहा, दोनों की बराबर सामर्थ्य होगी, क्योंकि अपना कर्तव्य कर्म करते हुए नाम जप कर रहा है, और एक आदमी एकांत में बैठ करके नाम जप करके परमात्मा की आराधना कर रहा है। तो जो उसमें बल जागृत होगा, वह उस फावड़ा चलाने वाले में बल जागृत होगा। अपने कर्तव्य को पूजा मान करके जो भगवान का स्मरण करते हुए करता है, उसका कर्तव्य उसको परम पद की प्राप्ति कराता है। और जो अपने कर्तव्य को भूला हुआ भोग वासना में है, वो फिर ठीक से नहीं चल पाता है। ये दोनों बात समझनी है कि पूजा का तात्पर्य केवल माला लेके बैठना या केवल आरती कर देना मात्र नहीं है। पूजा का तात्पर्य है हम जो भी कार्य करें, वो जन समाज के मंगल के लिए, अपने मंगल के लिए, भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य, जो कर्तव्य, जैसे आप किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है ना। उस कर्तव्य पालन के लिए शरीर सेवा और अर्थ सेवा दोनों की जरूरत होती है। तो हम शरीर को पुष्ट रखते हुए जो धर्म पूर्वक अर्थ कमाते हैं, उससे हम वो सेवा करते हैं, ये हमारा लौकिक कर्म हुआ। लेकिन हम भगवत भाव से करते हैं कि मेरी माँ में भगवान है, मेरी पत्नी में भगवान है, मेरे पुत्र में भगवान है, और इन सब सेवाओं का फल हो, मेरे भगवान प्रसन्न हो, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ पाए हमारी बात को? बिल्कुल सरल भाषा में कह रहा हूं, वही कर्म हम भगवान की प्रसन्नता के लिए धर्म पूर्वक करें, तो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाए। वही कर्म अपनी भोग वासना, अपने मोह ममता के पोषण के लिए करें, तो वही बंधन कारक हो जाएगा। आप जिस पद पे हैं, जिस कर्तव्य पे हैं ईमानदारी से, उस अपने पद और कर्तव्य का प्रयोग करते हुए और नाम जप करते और दूसरों का मंगल करते, बड़ी भारी पूजा हो रही है। इस बात को समझना, ऐसा नहीं कि हम पूजा नहीं कर रहे। एक होता ना कि भाई तो पूजा नहीं करते तो पूजा, हम सत्य बात को बता रहे, मनमानी आचरण को कोई पूजा नहीं है, वो कोई पूजा नहीं है। कपिल भगवान कहते हैं जैसे राख में किया हुआ हवन बेकार जाता है, ऐसे उसकी पूजा बेकार जाती है। अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे पद है और आप अधर्मिक से घूस ले लिया और निर्दोष को दंड दे दिया और बाद में जाके हनुमान जी को तुम लड्डू को भोग लो, हनुमान जी पाएंगे, वो पूजा मानी जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। अपने कर्तव्य का ठीक पालन करना भगवान की पूजा है। अपना कर्तव्य करते हुए नाम जप करो, अगर आपको समय मिलता है तो थोड़ा पूजा कर लिया, थोड़ा पाठ कर लिया, लेकिन पूजा पाठ का फल वही जो आप कह रहे कि अपना हम दोष त्याग सके, अपने हम कर्तव्य का पालन कर सके, वही हमारे को पूजा सही लगती है और फिर सब नाटक लगेगा। अगर आप पूजा के बाद गलत आचरण करते हैं तो आप नाटकी हैं, आप दम्भी हैं, वो आपकी पूजा नहीं मानी जाएगी। और आप बिल्कुल पूजा नहीं करते लेकिन अच्छे आचरण करते हैं, दूसरों का हित करते हैं और नाम जप करते हैं, भगवत भाव से आप प्रत्येक पल पूजा कर रहे हैं भगवान की। देखो इसका हमारा कहने का आंतरिक रहस्य कि हमें मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। आएगी ना मृत्यु, कब आएगी इसका पता नहीं ना, किसी भी क्षण आ सकती है। गाड़ी में VIP बढ़िया स्तर से और चल रहा गाना और बढ़िया ड्राइविंग, अगला सेकेंड मृत्यु का, मस्ती में है बिल्कुल, हो हल्ला मचा रहे सब नौजवान, और अगला एकदम खत्म शांत, मानो बिजली कटी अंधेरा। ऐसी मृत्यु आती कुछ भरोसा नहीं, कब कहां कैसे आ जाए। तो अगर हम राम कृष्ण हरि राधा राधा रट रहे, राधा हमारी मृत्यु हो गई, अब हमारे को भगवत प्राप्ति होगी, हमारी दुर्गति नहीं होगी, हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते अगर नाम जप करोगे तो इस लोक में भी मंगल रहेगा और आपका परलोक भी बन जाएगा, आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। जिनका नाम आप प्रारंभ में लेते हैं ये तो आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि कोई कार्य करने के पहले भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन हमारा आंतरिक जो कहने का रहस्य है कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, बैठे बैठे आ जाती है, नाचते नाचते आ जाती है, कवल तोड़ा और मृत्यु आ गई, दिल फेल हो गया। उस समय हमको भगवत स्मरण रहित अगर जीवन गया तो फिर हमारे कर्मों का हिसाब होगा, शुभ और अशुभ। और अगर नाम जप करते हुए शरीर छूट गया तो सब कर्म विध्वंस हो जाएंगे, हमारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम सबको कहते उठते बैठते, जैसे भैया से कहा नारायण नारायण कहो ना, कभी भी मृत्यु आ सकती है ना, इसलिए हर समय आपको याद है कि आपको जाना है। यही जानकारी हम रोज देते हैं सुबह, ए मरोगे होश में। हमारे सत्संग का नित्य में एक बार तो आएगा, ए जिस लोक में हो तुम, क्या नाम है इस लोक का, मृत्यु लोक, अर्थात मरोगे। कब मरोगे कुछ पता नहीं, तो इसलिए हमारे समय तैयारी रखे ना। मरने की तैयारी कौन करता है, मरने की तैयारी कहां हो रही, किसी को याद है? और कोई भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है, नहीं मर सकता। और मरने के बाद फिर हमारे साथ कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं, ना शरीर, ना यहां का कोई रिश्तेदार, ना नातेदार, ना बैंक बैलेंस, ना रुपया पैसा, सिर्फ नाम जाता है, नाम राधा राधा राधा राधा। इसीलिए कहते हैं कभी याद करते हो कि मरना है, नहीं अपने लोग कहां याद करते हैं, नहीं याद करते ना। और ये है इसलिए याद करो कि कभी भी शरीर छूट सकता, जब जरूरी बुढ़ापा में शरीर छूटेगा, जवान नहीं मरते। हाँ इसलिए मुझे हर समय तैयार। अच्छा ये बातें ना हिम्मत होती कहने की और ना हिम्मत होती सुनने की। जैसे मान लो हम आपसे कह रहे आपको याद है मरने, अगर आपके रिश्ते नातेदार या पत्नी आदि हो ना, बोले इस बाबा के पास तो कभी लिवा के नहीं लाएंगे, क्योंकि ये और आशीर्वाद तो दिया ले और ऊपर से कह रहे मरने का याद है। देखो हम इसलिए होश दिलाते हैं कि यहां तुम जो कुछ इकट्ठा कर रहे हो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्यों भाई, आपको पता है कुछ जाएगा? अच्छा अकेले, केवल अकेले जाना है आपको, कोई दोस्त नहीं साथ होगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो यार बैंक बैलेंस भी ले जाएगा, कोई मित्र नहीं जाएगा, पतली भी नहीं जाएगी, कोई नहीं जाएगा। तो एक तो कुछ ऐसा खर्चा पानी की व्यवस्था कर लो कि आपकी उस यात्रा में काम आवे, वो है नाम। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। और याद रखो कि अब कितने मिनट है पता नहीं, कितने सेकंड है पता नहीं, हमारा समय अलर्ट रहते हैं क्योंकि किडनी फेल है, कभी भी बुलावा आ सकता है मालिक का कभी भी। तो हमारी तो फेल है तो हमें पता है, तुम्हारी पास होते हुए फेल है नहीं कब किस समय कहां। इसलिए भाई हर समय राधा राधा रटो, और बहुत कृपा है आपके ऊपर जो आप भगवान का आश्रय लिए हुए और सच्चे

0: भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय और उनका सत्संग। ये गुरु बनाना मतलब ये हमको बहुत गलत सा लगता है कि किसी को थोपे, किसी के ऊपर जबरन ऐसी बात डाले गुरु नहीं बनाओगे, तो ऐसा ऐसी जरूरत नहीं। हम जो बात करें उसको पकड़ना, हम कह रहे राधा राधा बोलो और सत्संग सुनो और सत्मार्ग में चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो। गुरु बनाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो सब गलत भाव है। हाँ, वो खुद भक्त की एक समर्पण वृत्ति होती है, अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र नाम और उपासना में अपने भावों को समर्पित करता है। अब आजकल क्या होता है, इन्हीं सद्भावों का दुरुपयोग किया जाता है, इन्हीं सद्भावनाओं का, सद्वाक्यों का, तन मन प्राण समर्पित करो गुरु, नहीं तो सब बेकार जीवन बेकार। गुरु निष्प्रेय निरपेक्ष और चेला आसक्त, तो कल्याण हो गया। गुरु निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं, निष्प्रेय कोई चाह नहीं, ऐसा। तो गुरु का मतलब क्या होता है, हमने कहा राधा जपो, आप राधा राधा जप रहे, ये मन नहीं करना ये करना, बस हो गया बात, मान लिया गुरु। गुरु का मतलब ये थोड़ी कि कंठी बंधवा ले और उनकी ये सब बाहरी व्यवहार, खूब नाम जप करो, मनमानी पापाचरण करो। गुरु की बात ना मानो तो तुम वैकुंठ चले जाओगे, क्या नरक जाओगे, नरक पक्की बात मान लो। इसलिए आचरण शुद्ध हो, भगवान नाम जप हो और भगवान के किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा के वाक्य, भगवत वाक्य, उनको हम सुनकर अपने आचरण में उतारे। सब जगह गुरुदेव बैठे हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शतम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो कुछ बातें ऐसी होती जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, इन बातों को ना माने। धर्म पूर्वक चलो, नजदीक आने की जरूरत नहीं है, पति को भगवान मानकर, सास ससुर को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो, घर गृहस्थी में जब आपको समय मिले तो भगवान की पूजा करो, नहीं रसोई सोनी सेवा पोछा लगाते राधा राधा राधा राधा, साल छह महीना में जब कभी समय मिले तो पति को साथ लेकर दर्शन कर गई, राधा राधा राधा, बस हमारी गोपी जनों से बढ़कर कोई महात्मा नहीं हुआ। सब गोपीजनों की चरण रज की वंदना के, वंदे नंद बज श्री राम पाद रेणु अभीक्षण सा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, बड़े बड़े परम हंसुन। तो गोपीजन क्या करती थी, पोछा लगा रही, सोनी लगा रही, बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण, उनका चिंतन करे, धान कूट रहे श्री कृष्ण, गाय दू रहे श्री कृष्ण, तो बड़े बड़े परम हंस उनकी चरण धूलि प्राप्त किए। सब आशक्ति श्री कृष्ण के लिए, पति सेवा, पुत्र परिवार सबकी सेवा गोपीजन करती है, लेकिन उसका फल श्री कृष्ण प्रेम हो गया, यही तो भक्ति का स्वरूप है। अच्छा, गुरु का मतलब है संत के वाक्य को मान लेना, बस मान लिया सो गुरु, और ना माने तो फिर कंठी बनाने मात्र से थोड़ी गुरु हो जाता है। कितने कंठी बनाए घूम रहे हैं और आचरण भ्रष्ट है, तो क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कदापि नहीं होगी। मनमानी आचरण करने से और गुरु द्रोह और गुरु अपराध लगता है, इसलिए हम तो सखी यही कहते हैं कि आप बिल्कुल जैसे चल रहे हो वैसे चलो। हाँ, कभी भाव आवे कि अब संस्कार तो पति पत्नी दोनों मिलकर के वैष्णो तिलक ले ले, वैष्णो छाप ले ले, वैष्णो मंत्र ले ले, और नहीं तो राधा राधा राधा और सच्चे आचरण से चलो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें। करें 9006978856 या 6203

0: 9 5 6 4।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।

आया था भार्या सीता के साथ पर्ण कुटी में निवास करते हुए श्रीराम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राजगुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राजगुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिन हिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हाँका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरा पान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में यह आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल होते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग,
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें, विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
9: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
10: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
11: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क 99 393 65 930।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाय कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड ठावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो।

0: रोग सुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554493
1: और 90971602।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 97665650।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थाना की दलाली करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक विकास मित्र की हो गई मौत। आर्म्स एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा। 215 लीटर शराब के साथ एक स्कॉर्पियो सवार तस्कर गिरफ्तार। और हत्या के प्रयास में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ने एक युवक को पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। विजयपुर थाना में दलाली करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि थानों में दलाली करने वालों की अब खैर नहीं है। थाना अध्यक्ष के नाम पर आरोपी के द्वारा केस में एक गिरफ्तार आरोपी को मुक्त कराने के लिए अवैध वसूली का प्रयास किया जा रहा था। इसकी सूचना पुलिस को मिल गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तुरंत संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी संतोष विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला का रहने वाला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि विजयपुर थाना अध्यक्ष के नाम पर आरोपी ने 2 लाख रुपए का मांग किया था। अभियुक्त को मामले से मुक्त कराने का प्रलोभन देकर 2 लाख के वसूली की जानकारी जब पुलिस को हुई, पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। इसमें 1 लाख रुपया आरोपी के मोबाइल पर पीड़ित के द्वारा ट्रांसफर भी किया गया था। यह साक्ष्य भी पुलिस को मिला और इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस थाना के दलाल पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई और इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी मंतोष विश्वकर्मा, पिता हंस नाथ विश्वकर्मा, ग्राम जिगना दीक्षित, थाना भटनी, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसके एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने अपराध में संलिप्तता स्वीकार किया है। गिरफ्तार आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से अपील किया है कि किसी भी प्रकार की अवैध वसूली, धोखाधड़ी अथवा भ्रामक गतिविधि की सूचना तत्काल गोपालगंज पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर दें। इधर सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा टोल टैक्स के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से विकास मित्र कर्मी शैलेश राम की मौत हो गई। हादसा सुपौली बरहिमा के पास उस समय हुआ जब मृतक तिलक समारोह से घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने इन्हें जोरदार ठोकर मार दिया और फरार हो गया। घटना के बाद वहां हलचल मच गया। तुरंत लोगों ने घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक सिधवलिया थाना क्षेत्र के खजूरिया पंचायत में काम कर रहा था। विकास मित्र के रूप में सेवा देने वाले शैलेश राम के मृत्यु के बाद उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए 215 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक लग्जर

0: गाड़ी को पकड़ा है और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर बघवार के पास पुलिस ने छापेमारी की और स्विफ्ट डिजायर कार को पकड़ा गया। इस गाड़ी से 215 लीटर विदेशी शराब मिली। साथ ही कार को जब्त कर लिया गया है और इसमें वाहन मालिक और गाड़ी के चालक के विरुद्ध कांड दर्ज करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। भोरे थाना की पुलिस ने 2024 में अभियुक्त बबलू चौहान को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक कुमार की अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहरा दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25(1)(b) के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को 6 महीने की और कठोर कारावास तथा 1,000 रुपए के अर्थ दंड से एक और धारा के अंतर्गत दंडित किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। यह निर्णय समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि अवैध हथियारों का निर्माण, क्रय विक्रय, उपयोग अथवा बिना वैध अनुज्ञप्ति के उनका कब्जा रखना एक दंडनीय अपराध है। ऐसे हथियार समाज में भय, असुरक्षा तथा आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सफियाबाद गांव में कल दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें कई लोग घायल थे, सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बैकुंठपुर पुलिस FSL की टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद इसमें प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी की है। बताया जा रहा है कि घायलों का उपचार सदर अस्पताल में चल रहा है। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति धनजी शाह को सदर अस्पताल से गोरखपुर रेफर किया गया है, जहां उनके स्वास्थ्य की स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। इस संबंध में पुलिस ने बैकुंठपुर थाना कांड संख्या 311-26 दर्ज कर अनुसंधान करते हुए त्वरित कार्रवाई की और घटना में संलिप्त अभियुक्त सोनू शाह, पिता हरी शाह, साकिन सफियाबाद थाना बैकुंठपुर को गिरफ्तार किया। इससे पूछताछ में आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि इस घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की भी पहचान कर गिरफ्तारी के लिए मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लगातार छापेमारी की जा रही है। वर्तमान में वहाँ विधि व्यवस्था सामान्य स्थिति में बताई जा रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने गोपालपुर नहर के दुबोलिया तीन मुहानी के पास गुप्त सूचना के आधार पर एक ई रिक्शा से 195 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब को जब्त किया। बताया जा रहा है कि इस मामले में कटिया थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर वार्ड नंबर 5 के रहने वाले शैलेश गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब लेकर आ रहा था, तभी पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने छापेमारी करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। अब पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसकी ई रिक्शा और शराब को पुलिस ने जब्त किया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी दुनिया के किसी भी कोने से रेडियो रिमझिम की इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थाना की दलाली करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में एक विकास मित्र की हो गई मौत। आर्म्स एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा। 215 लीटर शराब के साथ एक स्कॉर्पियो सवार तस्कर गिरफ्तार। और हत्या के प्रयास में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी ने एक युवक को पकड़ा। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी। तो तू इनके लगे काहे नहीं कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए। आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
12: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-651 या 97-0-97-06-575।
13: एक रंग इश्क का।
14: पिछले पन्नों में आपने जाना कि किस तरह मीना लिख सीधी सी बात को इनकार करने गई थी, और डेविड के सामने आते ही उसका इनकार इकरार में तब्दील हो गया। पेंटिंग का जो काम वो गाये बगाये किया करती थी, उसमें पूरी शिद्दत से कामयाब होने को मचल उठी थी। क्या इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन में कोई और तस्वीर भी उभरने वाली है? ये तो तभी मालूम होगा जब पलटेंगे अगला पन्ना इश्क का। हाय, आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का। पेंटिंग कंपटीशन का नया बखेड़ा जो खड़ा हुआ था, उससे मीनल परेशान थी। तो अमिया का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान को पार कर चुका था। मीनल की बातों से वो इतनी ज्यादा जज्बे में आ गई थी कि आज वो कई पेंटिंग आर्टिस्ट को पीछे छोड़ सकती थी। आज अमिया के मन में उसके जैसा कलाकार दुनिया में था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मीनल इस उलझन में थी कि अगर पेंटिंग कॉम्पिटिशन में कुछ बनाना हुआ तो वो क्या बनाएगी। पूरा पेंटिंग डिपार्टमेंट होगा, आर्ट्स के अलग अलग सेक्शन वाले स्टूडेंट्स होंगे, कुछ इतिहास और अर्थशास्त्र के भी होंगे जिन्हें शायद कोई इंटरेस्ट नहीं होगा पेंटिंग्स में, पर देखने वाले तो कई सेक्शन से आएंगे। कुछ उसके हिंदी सेक्शन वाले भी होंगे, उस शिवानी से भी तो अच्छी पेंटिंग बनानी होगी। ये स्कूल का कॉम्पिटिशन तो है नहीं कि जहाँ आम केला अमरूद बनाया और टीचर ने कहा शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बनाई हो। यहाँ तो कई दिग्गज होंगे। हफ्ता भर यही सब उधेड़बुन में रही कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कुछ अच्छा बनेगा या नहीं। बीच बीच में आंखों में रखी हुई मीनल और शिवानी की जलन भी एक दूसरे से टकरा जाती थी। पर अब शिवानी पहले की तरह मीनल से बदतमीजी से बात नहीं करती थी, थोड़ी शांत सी हो गई थी। पर क्या ये किसी आने वाले तूफान से पहले का सन्नाटा था? क्योंकि शिवानी इतनी जल्दी सुधर जाए, अपने ऊपर हुए अपमान को भूल जाए, ऐसी तो लड़की नहीं थी। रही बात मीनल की, तो वो बस वर्तमान में जीना पसंद करती थी। उसके लिए शिवानी अभी कुछ कर नहीं रही थी तो सब सही था। इस हफ्ते के दौरान मीनल जब डेविड के सामने आती तो एकदम शांत दिखने की कोशिश करती, और उसके जाते ही कुछ अलग से ख्यालों में खोई सी रहती थी। डेविड ने भी कुछ कुछ बातें महसूस की थी कि मीनल आजकल कुछ खामोश सी है। इस तरह वक्त गुजरा और वो कंपटीशन की सुबह आ गई। सारे प्रतिभागी अपने अपने रंगों के साथ मैदान में पहुंच चुके थे। पूरे कैंपस की गार्डन साइड पे जहां तहां लोग अपने बोर्ड और पेंट के साथ थे। जहां मीना की दुविधा क्या बनाए इस बात की थी, वहीं अमिया इस बात से परेशान थी कि कहीं उसकी पेंटिंग की कोई कॉपी ना कर ले। अमिया ने बड़ी ही मेहनत के साथ बारीकी से अपने लिए कोना ढूंढ लिया था, पर आज उसका जज्बा किसी भी जंग को जीतने के लिए काफी था। पेंटिंग कॉम्पिटिशन को जज करने के लिए कई सुप्रसिद्ध पेंटर भी आए हुए थे। डेविड, जो खुद भी पेंटिंग की दुनिया का उभरता हुआ सितारा था, आज जजेस के साथ ही बैठा था। शिवानी ने पर्वत, नदियाँ वगैरह बनाने का सोचा, जो काफी अच्छे से उसे आता था। वहीं मीनल ने सोचा कि वो दुनिया की तस्वीर बनाएगी, उसमें अपने रंग भरने की कोशिश करेगी। उसने पहले पेपर को अपने पसंदीदा लाल रंग से कवर किया, रंग हल्का ही रखा ताकि रंग चुभने से ज्यादा निखारने का काम करे, और फिर ग्लोब बनाने लगी। उसने ब्रश की जगह अपनी उंगलियों को तरजीह दी। उंगलियों के सहारे ही हल्का और गाढ़ा रंग भरी जा रही थी। माहौल वहां का पूरा शांत था। सब अपनी अपनी चित्रकारी में लगे हुए थे। जजेस भी अपनी बातों के बताशे आपस में ही घोल रहे थे। रह रहकर डेविड की तारीफें चल रही थी कि उसने ये जो आर्ट को मॉडर्न रंग देने की कोशिश की है, ये बहुत ही सुंदर है। डेविड खुश था। उसने जजेस को अपने साथ उसके केबिन में चलने की गुजारिश की। उधर शिवानी ने अपनी पेंटिंग को कंप्लीट किया और फिर अपनी सहेलियों के साथ बाकियों की कलाकारी देखने में मसरूफ हो गई। बड़ी ही अद्भुत थी सबकी चित्रकारी, पर शिवानी का निशाना कुछ और ही था। उसने देखा कि मीनल अपनी पेंटिंग को छोड़कर अमिया के पास खड़ी होकर उसकी पेंटिंग देख रही है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए मीनल की पेंटिंग के पास पहुँच के उसी के ब्रश से इधर उधर रंग छिड़क दिया और फिर कपट भरी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली गई। और दूसरी तरफ मीनल अमिया से बात करने में मसरूफ थी। अमिया बड़ी खुश थी और उसने मीनल को बताया कि वो किसी पुराने बादशाह की तस्वीर बना रही है अंगूर खाते हुए। हालांकि उसकी पेंटिंग अभी अधूरी थी, पर उसकी अधूरी तस्वीर को देख के भी कुछ अंदाजा लगाना मुश्किल था। मीनल ने अमिया के हौसले की तारीफ की और अपनी पेंटिंग के पास आ गई। यहाँ आते ही उसके होश फाख्ता हो गए थे।
15: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
12: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
15: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
12: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
16: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
17: सुनिए,
18: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
17: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
18: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
17: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
15: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
12: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
15: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
12: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86164।
19: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
20: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
19: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
13: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
21: ये क्या हुआ, किसने किया ये?
22: उसका मन अब रुआसा सा था, पर जो हार जाए वो मीनल नहीं थी। मीनल ने सोचा कि वो नई पेंटिंग बना लेगी, पर तभी उसकी नजर उन तमाम रंगों पर पड़ी जिसकी टेढ़ी टेढ़ी लकीरें कुछ अलग सा ही बना रही थी। उसने तमाम लकीरों को अपनी उंगलियों के सहारे एक अलग रंग दिया और कुछ ना बनते हुए भी रंगों की एक खूबसूरत लकीर बन गई। तमाम जजेस अपनी नजर से सबकी तारीफ करने लगे, सभी की तस्वीरों को देखा। अमिया ने अपनी पेंटिंग बहुत ही उत्साहित होकर जजेस को दिखाई और जजेस से तारीफें सुनकर वो खुश से ज्यादा हैरान थी, क्योंकि अंगूर खाते हुए बादशाह की जो तस्वीर अमिया ने बनाई थी उस पर जज साहब ने कहा, बहुत खूब, ये जो आसमान से लटके हुए गुब्बारे आपने बनाए हैं ना, ये कुछ खूब ही है। बेशक आप पेंटर नहीं है पता चलता है, लेकिन आपका ये जो ख्याल है दुनिया के नजरियों को उल्टा करने का, ये काबिले तारीफ है। अमिया सदमे में थी और मन ही मन सोच रही थी कि मैंने तो अंगूर खाने वाले बादशाह बनाए थे। ये बात सुनते ही मीनल की तो हंसी छूट गई, पर उसने खुद पर काबू करते हुए अमिया को शाबाशी दी। फिर सबकी तस्वीरों पर दो दो बात करते हुए जजेस चले गए और उन्होंने विनर्स की घोषणा कर दी। मीनल को उसके रंगों के अद्भुत इस्तेमाल के लिए कॉन्सोलेशन प्राइज मिला और बाकी तीनों पुरस्कार पेंटिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के ही हाथ लगे। मीनल को आज के हुए हादसे ने एक अलग ही जोश दिया था। आज की बात ने उसे जिंदगी का एक गहरा सबक सिखा दिया था कि जब परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों तो भी रास्ते बनाए जा सकते हैं। इन सब में डेविड का साथ उसके लिए खास रहा। इस पेंटिंग कॉम्पिटिशन ने मीनल में एक नया जोश और जज्बा भर दिया था। मीनल बहुत खुश थी। हल्की सी शाम थी जब डेविड मीनल के पास आया। उसने मीनल को शाबाशी दी और उसे कैंटीन में ट्रीट देने की बात भी की। मीनल उसकी दोस्त जैसी थी, हालांकि दोनों की उम्र में फर्क अच्छा खासा था, पर फिर भी ये दोस्ती खास थी। मीनल ने भी इनकार नहीं किया और डेविड ने उसे कहा कि वो अमिया और शिवानी को भी लेकर आए। शिवानी? मीनल ने मन ही मन सोचा, खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। फिर वो शिवानी के पास गई और जाकर बोली कि डेविड सर ने आपको भी बुलाया है कैंटीन में ट्रीट के लिए। शिवानी बड़े ही दिल से मीनल का हाथ पकड़कर बोली, मीनल मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैंने हमेशा तुमसे नफरत की जबकि तुमने कभी भी मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। मैंने आज भी तुम्हारी पेंटिंग पर बात करने की कोशिश की। ये सुनते ही मीनल थोड़ा चौंकी, पर खुद को संभालते हुए वो थोड़ा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, पुराना सब भूल जाते हैं एंड लेट्स बी फ्रेंड्स। पीछे से अमिया ने मीनल के कान में बोला, बच के रहना, नागिन है ये, डसेगी जरूर। फिर शिवानी ने अमिया की तरफ देखकर बोला कि अमिया तुम भी मुझे माफ कर दो ना, हम सब साथ में दोस्ती रखेंगे। इस पे अमिया तबाक से बोली, देखा मीनल, मैं ना कहती थी कि शिवानी उतनी बुरी भी नहीं है जितना तुम सोचा करती थी। फिर तीनों कैंटीन की तरफ चल दी। वहां कैंटीन में बातों बातों में शिवानी ने कहा कि डेविड सर मेरी आज तारीफ हुई है और मीनल से दोस्ती भी, तो इस बात पे मेरे घर पे एक अच्छी सी हाउस पार्टी बनती है ना? मैं मीनल, अमिया और बाकी फ्रेंड्स को तो इनवाइट कर ही रही हूँ, व्हाई डोंट यू जॉइन अस? तुषार सर और कपिल सर भी आ रहे हैं। डेविड ने भी ये सुनकर हामी भर दी। क्या ये कोई षड्यंत्र था या शिवानी सच में सुधर चुकी थी, ये तो अगले कुछ पन्नों में पता चल ही जाएगा। पर फिलहाल जो पन्ना मीनल की डायरी में उस दिन का था वो कुछ ऐसा था। तमाम रंग हसरत का मैंने लुटा दिया, एक रंग लाल ने मुझको बना दिया। क्यों कैद हो कोई हसरत किसी मुकाम पे, क्यों कैद हो कोई हसरत किसी मुकाम पे, क्यों खुद में हमने खुद की दुनिया बना लिया। डेविड से मीनल के कुछ धड़कते जज्बों की बातें अभी बाकी हैं और ये पन्ना भी पलटा जाएगा तब जब पढ़ेंगे और रंगेंगे एक रंग इश्क का।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
1: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
8: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
8: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
3: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
13: एक रंग इश्क का।
14: पिछले पन्ने में आपने जाना कि कैसे मीनल ने पेंटिंग कंपटीशन में अपना नाम रोशन किया, जिसमें उसके हार जाने या शायद यूं कहें कि मजाक बनने की पूरी गुंजाइश थी, पर उसकी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय ने उसे इनाम का हकदार बना दिया। और बात यही नहीं रुकी, उससे नफरत करने वाली शिवानी ने भी उसे दावत पे बुलाया और साथ ही डेविड को भी। क्या ये रंग जिंदगी की कैनवस पर कोई खूबसूरत तस्वीर बनाएगा या फिर मजाक उड़ाएगा, ये तो तभी जान पाएंगे जब पलटेंगे अगला पन्ना, इश्क का। हाय, मैं हूँ कृति और आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का। गाना पर मीनल अपने कमरे में बैठी हुई कुछ ना कुछ ख्यालों की नैया में डोले जा रही थी। उसके ख्याल पेंटिंग कंपटीशन की खूबसूरत यादों से होते हुए शिवानी की बातों तक जा रहे थे। अब तो शिवानी दोस्त हो चुकी थी, उसने पार्टी में भी बुलाया है, शहरी दावत है, कैसे जाना होगा, क्या पहनना होगा, किस तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह के सवालों ने मीनल को घेरे रखा था। मीनल के लिए ये सब इतना आसान नहीं था कि पार्टी की आबोहवा को आसानी से समझ सके। हालांकि वो हर रोज खुद को तैयार करती थी, पर फिर भी उसके जहन में कुछ कश्मकश सी थी कि आखिर किस तरह वो उससे पेश आएगी। वहां तो हाई सोसाइटी के लोग भी होंगे, कहीं किसी ने बेइज्जती कर दी तो। फिर कई बार ये भी ख्याल उसके जहन में दस्तक देता था कि अगर इनकार कर दूं तो, कोई बहाना बना दूं तो क्या होगा। तबीयत खराब होने का भी तो बहाना बनाया जा सकता है ना। पर फिर वो सोचती कि अभी अभी शिवानी से दोस्ती हुई है, उसने इतने प्यार से एक दावत में बुलाया है, सब दोस्तों को बुला रही है, उसका दिल तोड़ना भी तो ठीक नहीं ना। हाय राम, किस मुसीबत में फंसी हूं। मीनल अपने ही ख्यालों में बैठी हुई थी कि वहां अम्मिया आई, जो इस बात से बेहद खुश थी कि उसे एक शहरी पार्टी में जाने का मौका मिल रहा है। उसने सुबह से लगभग 20-22 ऑप्शन दे दिए होंगे मीनल को कि उसे क्या पहन के जाना चाहिए। अम्मिया ने खुद पे भी कई तरह के प्रयोग किए थे, जिनमें से आधे तो मीनल ने रिजेक्ट कर दिए और कुछ तो बेहद ही अजीब से थे। मीनल अपने सवालों में उलझी हुई थी, लेकिन अम्मिया को नजरअंदाज करना उतना ही मुश्किल था। शाम जिस तरह धीरे धीरे अपनी जवानी की तरफ बढ़ रही थी, मीनल की धड़कनें भी वैसे ही बढ़ती जा रही। आज उसे तैयार होके खूबसूरत दिखना था। मीनल का हमेशा से मानना था कि असल खूबसूरती सादगी में है, लेकिन आज वो कुछ खास दिखना चाहती थी, तो वो थोड़ा खुद को साथ सवार रही थी। और तैयार होने के बाद मीनल सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ अम्मिया ने आज जीन्स और कुर्ती पहनी थी, जो कि उसके पहनावे से अलग था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे से हंस के बोली, तू भी अच्छी लग रही है। फिर दोनों हॉस्टल के बाहर आए, वहां पे एक टैक्सी ली और उसे शिवानी के घर का पता बताया जहां उन्हें जाना था।
0: अरे, स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
15: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
16: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
15: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
16: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
15: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
16: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
17: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
18: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
16: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
16: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
16: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
19: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
20: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
19: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
20: बिल्कुल बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
21: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
21: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
22: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
23: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
22: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
23: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
22: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
23: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
20: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
24: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
20: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
24: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
20: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
13: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
14: मीनल ने शायद पहली बार मुंबई का एक और नया चेहरा देखा था, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें और बेहतरीन बंगलोज थे। ऐसा लग रहा था कि इस भागती मुंबई में भी सुकून था और बड़ी ही खूबसूरती थी उस जगह की आबो हवा में। वो शिवानी के घर पहुँची ही थी कि शिवानी खुद उन्हें वेलकम करने आई। मीनल थोड़ी असहज सी थी तो अमिया थोड़ी दंग सी थी। उनके लिए ये सब नया नया था। अमिया ने वहाँ फुसफुसाते हुए मीनल से कहा, अरे मीनल, ये तो पूरा वैसा ही है जैसा टीवी और फिल्मों में देखते हैं। मीनल ने धीरे से अमिया को कान में कहा, चुप हो जाओ और चल के देख कि क्या हाल है यहाँ के। शिवानी ने मीनल की अपने दोस्तों से मुलाकात कराई। मीनल मीट रोहित, सिया, दिशा, मेहुल, कार्तिक, तुम सब इनसे बातें करो, मैं बाकी मेहमानों को देख लेती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी बाकी मेहमानों में व्यस्त थी। वहीं मीनल और अमिया अपने लिए जगह की तलाश कर रहे थे जहाँ वो अपनी असहजता को थोड़ा छुपा सकते। सभी दोस्तों से हाय हेलो करते हुए दोनों एक पूल साइड आकर खड़ी हो गई। वहाँ शिवानी ने आकर उन्हें एक एक ड्रिंक सर्व की। मीनल को लगा शराब है, उसने कहा नहीं नहीं। इस पर शिवानी ने उसे बताया कि उसे पता है कि वो शराब नहीं पीती, इसलिए उसके लिए और कुछ और मेहमानों के लिए शरबत का इंतज़ाम भी किया हुआ है। अमिया ने फटाक से शरबत का ग्लास उठाया और पी गई। फिर मीनल को एकदम जानकार इंसान की तरह बताया, हाँ शरबत बहुत बढ़िया है, पी लो। मीनल ने भी शरबत का ग्लास उठाया और पीने लगी। शिवानी फिर से अपनी मेहमान नवाजी में लग गई। मीनल अपनी सिंपल सी लुक में अच्छी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेविड था, जिसने आज खुद को फॉर्मल में डाला हुआ था। उसने सुर्ख काले रंग के कपड़े पहने थे जिनमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर सेट वो एक सटीक सी दाढ़ी की रेखाएं भी उसके रूप को और ज्यादा निखार रही थी। शिवानी ने डेविड का स्वागत शरबत देकर किया। डेविड ने भी उसका शुक्र अदा किया, पर आज डेविड की निगाहें भी किसी खास को ढूंढ रही थी और ये खास कोई और नहीं मीनल ही थी। मीनल अपने शरबत के ग्लास को लिए पूल साइड खड़ी थी, जहां दो चार और सहेलियां भी थी। शिवानी बीच बीच में आके उसका हाल जरूर पूछ लिया करती थी, क्योंकि मीनल उधर की चकाचौंध से कुछ घबराई सी थी। धीरे धीरे शाम और जवान होती गई। डेविड और मीनल की एक दो मुलाकातें भी हुई। दोनों ने आपस में कुछ बातें शेयर की। मीनल को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका सर कुछ चकरा सा रहा है। शायद उसके शरबत का कमाल था ये। थोड़ी देर बाद मीनल ने कुछ नशीली निगाहों से डेविड की तरफ देखा और लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास पहुंची। उसने डेविड से उसका हाल 3 बार पूछा। डेविड समझ चुका था कि सब नॉर्मल नहीं है। उसने मीनल को संभाला और फिर उसे लेकर पूल साइड पर बैठ गया। शिवानी का जो प्लान था कि मीनल को सबके सामने बेइज्जत करेगी, उस पर डेविड ने पानी फेर दिया था। दूसरी तरफ अमिया ने शिवानी को पानी में ढकेल दिया क्योंकि वो भी नशे में थी। उसने भी तो मीनल का शरबत चखा था, फिर वो खुद भी पानी में कूद गई और नहाने के मजे लेने लगी। इन सब हरकतों से पार्टी में एक अलग ही रंगत आ गई थी। सबका दिल खुश खुश था, सब जगह हंसी ठिठोली थी। वहीं मीनल डेविड से कुछ बातें कर रही थी और कुछ भी बोले जा रही थी, जो डेविड को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मीनल क्यों ऐसी बात कर रही है। तभी डेविड ने उसको समझाने के लिए अपनी भारी से आवाज में कहा,
1: मीनल मुझे लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए और मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ।
14: इस पे लड़खड़ाती हुई आवाज में मीनल ने कहा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है डेविड सर, और फिर उनके गले लग जाती है। मीनल की अचानक इस हरकत से डेविड घबरा सा गया और उसने तुरंत मीनल को खुद से अलग किया। उस वक्त डेविड कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या गया। ये वो लम्हा था जो मीनल के जीवन में पहली बार आया था। तभी डेविड ने मीनल को थोड़ी हैरानी से कहा,
1: मीनल तुम ठीक हो?
14: मीनल की आंखों में आंसू थे और उसने अपनी ही डायरी के एक पन्ने को याद करते हुए कुछ यूं कहा, ख्वाहिशों का क्या है कोई बोझ ना समझे, हर तरफ मंजिलें हो जरूरी तो नहीं, जरा सरकते रहे तो भी आगे ही होंगे, जरा सरकते रहे तो भी आगे ही होंगे, ये बह का हुनर भी तिफल से ही सीखा है। क्या ये जो मीनल और डेविड के हालात हैं, ये इश्क के रंग में कोई और रंगत घोलने का काम करेंगे या ये एक उभरे हुए रंग का भी अंत होगा, ये तो तभी जान पाएंगे जब पलटेंगे अगला पन्ना, एक और रंग इश्क का।
13: एक रंग इश्क का।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलरबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।

मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं तुम होती तो कैसा होता तुम ये कहती तुम वो कहती तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती तुम होती तो ऐसा होता तुम होती तो वैसा होता मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अब समय हो गया है समाचार प्रभात का। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86164।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊँ, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
7: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुँचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
3: क्यों, क्या हुआ है?
2: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
3: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
2: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
4: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करे 87894-18744।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
5: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
6: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
5: आरआर मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचायको,
6: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
5: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
6: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
5: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
6: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
5: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
6: सिवान ब्रांच में 9942071405, मेरवा ब्रांच में 8207856403।
7: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
10: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
10: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर
6: रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वे पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री वैष्णव पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI का दौरा करेंगे।
7: श्री वैष्णव STPI में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे पाटलिपुत्र जंक्शन से छपरा जाएंगे। केंद्रीय मंत्री छपरा रेलवे स्टेशन पर छपरा दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस और दोहरी घाट ओडिहार रेल सेवा के वाराणसी तक विस्तार का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बाद में श्री वैष्णव मढ़ोड़ा स्थित रेल इंजन कारखाने का दौरा करेंगे और 91वें निर्यात लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
6: राज्य सरकार ने लगभग एक दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी MVR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग 2 गुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क महंगे होंगे। एक रिपोर्ट।
8: नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष MVR में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं MVR में भूमि की श्रेणी का भी नए सिरे से निर्धारण किया गया है। ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र में भूमि की 7 श्रेणियां जबकि शहरी और महानगरीय क्षेत्र में भूमि की 6 श्रेणियां निर्धारित की गई है। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। समाचार कच्छ से राहुल कुमार।
6: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पटना सहित 11 जिलों में नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निवर्तमान अध्यक्ष आनंद किशोर को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। नालंदा के जिलाधिकारी कुंदन कुमार को पटना का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। उदिता सिंह नालंदा की नई जिलाधिकारी होंगी। CY भोटिया जहानाबाद, दीपक कुमार मिश्रा रोहतास, सौरभ सुमन यादव पूर्वी चंपारण, अलंकृता पांडे भागलपुर और विक्रम वीरकर खगड़िया के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। अंशुल कुमार को बांका, समीर सौरभ को गोपालगंज, नवीन कुमार को किशनगंज और कुमार गौरव को मुजफ्फरपुर का जिलाधिकारी बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
6: इधर गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 13 जिलों में नए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई है। विक्रम सिहा को सहरसा, उपेंद्र नाथ वर्मा को औरंगाबाद, भानु प्रताप सिंह को खगड़िया और शुभांक मिश्रा को वैशाली का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं कुमार गौतम पश्चिम चंपारण के, अमितेश कुमार बांका के, शौर्य सुमन पूर्णिया के, हिमांशु शेखपुरा के और राजेश कुमार बघा पुलिस जिला के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। इसके अलावा शिखर चौधरी को कैमूर, परिचय कुमार को कटिहार, कोटा किरण कुमार को जहानाबाद और शैलेंद्र सिंह को शिवहर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। राज्य सरकार किसानों और सहकारी संघों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बिहार राज्य विपणन सहकारी संघ का गठन करेगी। सहकारिता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि बिस्कोमान की तर्ज पर गठित होने वाले इस संघ से किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा, साथ ही कृषि और सहकारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि संघ की अंश पूंजी 500 करोड़ रुपए तय की गई है। मंत्री ने बताया कि संघ के निदेशक मंडल में 17 सदस्य होंगे। बियाडा की परियोजना समाशोधन समिति ने 30 औद्योगिक इकाइयों के लिए 26.59 एकड़ भूमि के आवंटन को मंजूरी दे दी है। इन इकाइयों से राज्य में 627 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आएगा। उद्योग मंत्री श्री अशी सिंह ने बताया कि इन औद्योगिक इकाइयों से 3000 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री चौधरी 238 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 114 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि 47 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 43 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहेंगे। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय की ओर से आज से पटना के पामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में विभिन्न जिलों के आम उत्पादक किसान शामिल होंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में पिछले 6 दिनों से मॉनसून निष्क्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 4-5 दिनों के दौरान मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी। इधर विभाग ने आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पटना, गया और भागलपुर समेत 10 जिलों में भी तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट है।
1: दिनांक 19 जून राज्य के बेगूसराय, लखीसराय एवं मुंगेर जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, नालंदा, नवादा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं छपरा, कैमूर, शेखपुरा और बक्सर में लू जैसी स्थिति रही। भागलपुर में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में पूर्वी चंपारण के रक्सौल की 19 वर्षीय बल्लेबाज अक्षरा गुप्ता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 126 गेंदों पर नवाद 306 रन बनाए। अपनी रिकॉर्ड पारी में अक्षरा ने 55 चौके और 8 छक्के लगाए। घरेलू क्रिकेट में मुंबई की इरा गुप्ता के बाद यह महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारियों में से एक है। अक्षरा की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत टीम ए ने 40 ओवर में 450 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में टीम सी 121 रन पर ही सिमट गई। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब बिना इंटर्नशिप के छात्रों को स्नातक की डिग्री नहीं मिलेगी। बिहार लोक भवन ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिए 120 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की

0: नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस नेटवर्क के सरगना की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पटना स्थित निगरानी की अदालत ने पथ निर्माण विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता अवधेश कुमार सिंह, उनकी पत्नी अल्पना सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों की अवैध संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाया है। जब्त की जाने वाली संपत्ति का बाजार मूल्य 1,14,00,000 रुपए से अधिक है। अवधेश कुमार सिंह को सीबीआई ने वर्ष 2009 में दिल्ली के एक होटल से 2,50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया था। बक्सर जिले के सरस्ती गांव के पास ठोड़ा नदी में नहाने के दौरान डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत ढेढ़ुआ गांव में तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नामचीन बसेरा बड़ चौराहे के पास एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में एक दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में से एक सुनील कुमार अररिया के पूर्व सांसद रामजी दास ऋषि का पुत्र है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है, मध्य पूर्व जंग, अमेरिका और ईरान ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, महंगी हुई जमीन, गांव में 1.6 गुना तो शहरों में 2 गुना हुआ सर्किल रेट। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 21 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, 11 जिलों में नए डीएम बने, 12 जिलों के एसपी भी बदले गए। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, एएन कॉलेज समेत 10 कॉलेजों में अब रात 8 बजे तक होगी पढ़ाई। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, सूबे में हर हाल में कायम रहेगा कानून का राज, सम्राट चौधरी। आज अखबार लिखता है, बिहार के नए महाधिवक्ता बने एसटी संजय। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर, पटना और छपरा में आयोजित कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट बढ़ाया, जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क होंगे महंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 21 और भारतीय पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला, त्यागराजन एसएम बिहार बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए। और बीसीए की ओर से आयोजित महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी में रक्सौल की अक्षरा गुप्ता ने 126 गेंदों पर नाबाद 13 शतक का रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चलता नहीं, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
4: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
3: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
5: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपरसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को

0: ले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
0: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
0: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: Now pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: जी, तो गाना सुनना था।
1: जी, गाना तो सुनाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
2: मेरा नाम अली अख्तर।
1: जी, और कहाँ से हैं आप?
2: मैं बिहार के रहने वाला हूँ, फिलहाल कश्मीर में से बात कर रहा
1: हूँ। अच्छा जी, तो बता दीजिए क्या फरमाइश है आज आपकी?
2: कव्वाली है
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
2: बस जो जो सुनने वाले सब किसी।
1: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी मैं मनन बोल रहा हूँ कपूरथला से।
1: जी जी, क्या हाल है आपका?
0: जी सर, अभी हम सो गए थे मैडम। हाँ, देखते हैं कि टाइम हो गया है, निकल गया टाइम, अभी तक कॉल नहीं।
1: अच्छा जी,
0: नींद खुला है ना? आज पानी होगा कि नहीं मैडम?
1: जैसे गर्मी है वैसे तो होना चाहिए पानी।
0: हाँ, तो बता रहा था मोबाइल पे क्या पानी का उम्मीद है 15 तारीख।
1: मौसम गर्म है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो बारिश तो होना ही चाहिए।
0: बहुत बेहाल है एकदम, इतना बेहाल है गर्मी के हद से ज्यादा, वही जाना आना मुश्किल हो गया है।
1: जी
0: गर्मी में हूँ सुबह से, कहीं बाहर नहीं निकलना।
1: बढ़िया है, गर्मी में बाहर ना ही निकले तो अच्छा है, काम ना हो तो ना ही निकले।
0: नहीं काम तो है ही है, पर बहुत मतलब हमको निकलने से पूरा इतना पसीना हो जाता है कि मैं क्या बताएं। सब मैडम सब हमको गाना सुना दीजिए, वो गाना कौन सा है? मोहब्बत में इतना करीब आ गए हम, ये अब जाना है मुश्किल सनम, सही गाना है, तो वो गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
1: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: डेडिकेटेड क्या करना, पहले तो आप ही तो प्रणाम करते, डेडिकेटेड शुरू करना है क्या बताए कोई कहता है तो हम भी काट पड़े तो सुनाया पहले। हाँ, बाकी तो जितना रेडियो प्रेमी लोग है रिंगिंग का वो तो है ही है, तो लोग जहाँ ट्यून करेंगे खोलेंगे या कान में सुने या रेडियो से सुने, तो गाना तो आ ही जाएगा। उन लोगों को जो सुनने वालों को जो है हम धन्यवाद देते हैं, वो लोग सुनेंगे। हाँ सुनवा दीजिएगा मैडम यही
1: गाना। ओके, फिर चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-75-42-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
11: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
12: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
13: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
12: तो देर मत कीजिए,
13: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9932-1308।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। नमस्ते मैडम जी।
16: नमस्ते,
15: कैसे हैं मैडम जी? बहुत इंतजार कराते हैं आप
16: जी।
15: क्या कीजिएगा, कॉल तो आते रहते हैं तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ही।
16: बहुत 50 कॉल किए।
15: कोई नहीं, अभी तो लग गया ना।
16: हाँ, बहुत कोशिश तो लगेगा
15: जी जी। तो बताइए कैसी हैं आप?
16: अच्छा है, आप अच्छा है ना?
15: हाँ, तो बता दीजिए आज की फरमाइश क्या है आपकी?
16: फरमाइश यही है, भिजी भिजी सड़कों पर तेरा इंतजार कर।
15: ओके, और ये सब किसी को सुनाना भी है
16: आपको? जितना रेडियो रिमझिम सब लोग सुनते हैं सबके साथ।
15: ओके, चलिए बढ़िया है, तो गाना प्ले करूं?
16: जी मैडम जी,
15: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी बहन जी, मैं सुनील साहू बोल रहा हूँ मधुसूदनगढ़ से।
0: क्या हाल है आपका?
1: बस भोजन कर रहे हैं और आपका रंजन सुन रहा है।
0: सब तो बढ़िया है। तो और बताइए क्या हो रहा है आजकल?
1: बरसात हो रही है दीदी हमारे यहाँ तो, आपके उधर?
0: आपके यहाँ बरसात हो रही है?
1: जी जी जी,
0: हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है।
1: हमारे यहाँ तो बरसात हो रही है, थोड़ी ठंडाई मिल गई है। गर्मी आ भी थी लेकिन पानी गिर गया, ठंडाई हो गई है।
0: चलिए तो बढ़िया है, आपको ठंडा मौसम मिल गया, अच्छा है। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है।
1: सही बात है। और पकौड़ी बन रही है? पकौड़ी खा लीजिए, आज तो मौसम के हिसाब से पकौड़ी बनवाई है हमने। जी
0: बढ़िया है। फिर बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
1: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है जय विक्रांता।
0: जी, और सॉन्ग
1: है कोटे ऊपर कोटरी में उसके रेल चला दूंगी।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: जी, सबसे पहले आपको है, और मांगीलाल धाकड़ है बड़ा गाँव से, मांगीलाल सनौतिया से, और गोपाल ओझा ककवासा से है, और गजराज सिंह लोधी है, और राम नरेश प्रजापति है पीतमपुर से। ये गाना सभी को डेडिकेट है। जी
0: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजी में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
6: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
6: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
7: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
8: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
9: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
8: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
9: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
8: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
9: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
11: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
11: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
11: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
11: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
12: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
13: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
12: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
13: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 9939966999।
14: Now pick your phone up. Hello? Now pick your phone up. Hello? बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
16: नमस्कार मैडम।
15: नमस्कार।
16: गाना सुनने के लिए है
15: जी, बताइए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको?
16: भोजपुरी में।
15: भोजपुरी में गाने का नाम बता दीजिए।
16: पिया हो कोनो के नजरिया गहरी है, श्री भारती का।
15: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
16: पवन को सुनाना।
15: ओके, वैसे आपका नाम क्या है?
16: ज्योति कुमार बात कर रहे हैं
15: जी।
16: भागलपुर ग्राम सुनना।
15: अच्छा, तो और सब बढ़िया, कैसे हैं आप?
16: और सब ठीक है।
15: अच्छा जी, तो मौसम कैसा है उधर का?
16: अभी तो मौसम काफी गर्मी है इधर।
15: वैसे इधर भी बहुत ही गर्मी है,
16: अभी तो बारिश नहीं हो रही है।
15: ओके, होगी, बारिश भी होगी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजीम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: जी, हम गाना सुनना चाहते हैं।
0: गाना सुनाएंगे, नाम बता दें।
1: जी, मेरा नाम दुर्गेश कुमार सिंह पड़ेगा।
0: ओके, कहाँ से है
1: आप?
0: जी, कैसे हैं आप?
1: जी, बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है।
0: अच्छा जी,
1: जी मैडम जी, मैं बोल रहा था ना कि टाइम में कॉल किया हूँ रेडियो में, तो बहुत अच्छा लगा, मेरा कॉल लग गया, बहुत तेज गाइड कर रहा था।
0: अच्छा जी,
1: ये गाना हमको कब तक सुनने को मिलेगा?
0: गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: दो टाइप सॉन्ग सुनेंगे।
0: तो गाने का नाम बता दीजिए मुझे।
1: आशिकी टू मूवी का हम तेरे बिन, उसमें ही है गाना वो।
0: है, ओके, और सब बढ़िया। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
12: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
13: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
14: Now pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
17: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
18: धन्यवाद। हम पूर्वी चंपारण बिहार का और से बोल रहे हैं, चुना सा
19: जी। तो क्या हाल है आपका?
18: बढ़िया है, अपना कहिए। अभी फिलहाल हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं।
19: मौसम कैसा है उधर का?
18: इधर तो ठंडा है, काफी ठंडा है, 2-3 दिन से बारिश हो रहा है।
19: अभी तो फिलहाल इधर बहुत गर्मी पड़ रही है।
18: उधर तो गर्मी है, इधर तो ठंडा है।
19: चलिए बढ़िया है, ठंडा है तो।
18: बारिश तो रोज हो रहा है यहाँ, शाम से शाम बारिश हो रहा है।
19: और सब बताइए, क्या क्या हो रहा
18: है? बढ़िया हो रहा है, काम पर लगे हुए हैं हम लोग सब लोग। गाना सुनना है पीला गंगा पार फिल्म का, तोरे सपनवा में डूबल रहेंगे त्योहार दीजिए।
19: और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
18: हाँ सुनाना है, दिनेश शाह जी है, उमेश शाह जी है और धर्मेंद्र यादव जी है और प्रीतपुर बाजार से है मनीष चौधरी जी, उनको सुनाना चाहते हैं। तो जितने सुनने वाले रेडियो दीजिए अपना।
19: ओके तो चलिए फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
18: जी
4: तोहरे सपनवा में।

0: गिरिए।
1: हेलो
2: जी, बहुत स्वागत है आपके ड्यूटन जी के कार्यक्रम हनुमान चॉइस में।
1: जी मेरा श्रम ग्राम जय छत्तर जिला कुशीनगर से बोल रहा
2: हूँ। जी कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम, अपने बताओ।
2: हम भी ठीक हैं।
1: मुझे गाना सुना दीजिए, तुम्हें देखे मेरी आँखें इसमें क्या मेरी खता है।
2: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: आपके लिए और जी परिवार के लिए, जितने भी रिमझिम किसका होता है सभी के लिए।
2: जी जी, तो तबीयत कैसी है आपकी?
1: अच्छी है मैम, अपना बताएं।
2: जी बिल्कुल ठीक है। ओके चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
1: जी थैंक यू।
2: सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
6: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
7: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के काहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल।
8: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला, सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
7: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू, अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करत तनी, तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
9: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9903369015 पे।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
11: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
11: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: हम रामा जी प्रसाद खाले राजन मार्केट से।
0: का हाल बा?
1: हाल ठीक बा, घाम बुझा तो या शांत हो रहा।
0: धूप तो बहुत ही निकल बा।
1: गाना सुना दिए
0: बताए, कौन सा गाना सुने?
1: फिर मिल गया है मंदिर जाने के बहाने।
0: अरे गाना क्यों के सुनाऊं के बाद?
1: जितना लो सुन दस सब कुछ सुने।
0: अच्छा चले, और ये सब ठीक बा?
1: ठीक बा।
0: ठीक बा, तब गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे सब।
1: नमस्ते,
0: रेडियो रंजी में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मुझे गाना सुनना है मैम।
0: जी गाना सुनाएंगे, नाम बता दें।
1: जावेद आलम।
0: कहाँ से हैं आप?
1: ग्राम धनखर से।
0: अच्छा जी, तो क्या हाल है आपका?
1: बहुत बहुत स्वागत है, आज मैंने आपके पास कॉल किया, आपने मुझे कॉल रिसीव किया, बात हुआ। बहुत पुराना लिसनर हूँ, काफी समय से मैं सुन नहीं रहा हूँ, इस कार्यक्रम से जुड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा मुझे अच्छा लगा तो मैं इस समय मिला तो मैंने इस समय में जुड़ गया इस कार्यक्रम से। पर मैं ये गाना सबसे पहले मैं डेडिकेट करना चाहूंगा आप सर भैया को, सोनू भैया को, और हमारे रेडियो रिव्यू के जो डायरेक्टर सर हैं कृपा शंकर श्रीवास्तव सर, उनकी आज बदौलत है कि आज विदेश के कोई भी कोने में, देश के कोई भी कोने में रहते हैं तो हर कार्यक्रम सुन पाते हैं। बहुत बेहद खुशी होती है, हमारे दिल से दुआ यही रहती है कि रेडियो रिव्यू दिन पे दिन प्रगति करे, सफलता मिले, हमें बहुत खुशी होगी।
0: जी बिल्कुल।
1: और मैं गाना सभी के साथ में सुनना डेडिकेट करना चाहूंगा। मैं अगर सामने तुमसे मिल ना करूं, मैं अगर सामने तुमसे मिल ना करूं, ऐसी तुम है कि मैं मुझसे

0: काफी समय के बाद मैं जुड़ा इस कार्यक्रम में, थोड़ा सा मुझे मन था तो गुनगुना लिया, यही गाना सुना दीजिएगा। जी मैम नमस्कार मैडम।
1: फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबका।
0: ओके ओके, सलाम वालेकुम।
1: मैं कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है बीके टाइल्स। बीके टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
2: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: अरार मोड़ एसपी कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोट,
2: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
2: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
2: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40,00,000 करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166264498 पे।
9: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
10: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
11: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
12: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
10: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
2: कॉल करे 87894 18744।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
16: हम रंजन,
15: क्या हो रहा है?
16: अभी खाना पीना हुआ है, अभी काम कर रहे हैं, जा रहे हैं।
15: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
16: टेक्नोलॉजी जी, बरसात मूवी का।
15: कौन सा सॉन्ग?
16: तेरी अदाओं पे मरता हूँ, तुझे लव मैं करता हूँ।
15: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
16: अपने वाइफ को, अपने दोस्त सब को ला के ना चाहते।
15: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: थैंक यू मैम, और आपको नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
0: बस बढ़िया। अनिल बात कर रहा हूँ छोटपुर से।
1: बताइए क्या हो रहा है अभी?
0: अभी काम पे हैं। और वो क्या हुआ कि सडनली मम्मी का तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया, तो उस दिन हम दिखाने चले गए डॉक्टर के पास, और उसी टाइम नंबर भी था आने वाला और उसी टाइम कॉलिंग का भी टाइम था, तो दोनों एक साथ नहीं हो पाया। कोशिश था मेरा कि कॉल करेंगे लेकिन नहीं हो पाया।
1: तो अभी आपकी मम्मी कैसी हैं?
0: अभी ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रिकवर हुआ है, ठीक है एकदम।
1: चलिए बड़ी है। तो और सब बताइए क्या हो रहा है? खाना हो गया आपका?
0: हाँ, खाना वाना खा के काम पे आए हैं।
1: जी,
0: और काम भी चल रहा है, रेडियो भी सुनते रहते हैं उसी में बीच बीच में। अभी आएंगी वो सोनी जी जब 12 बजे, तो उसमें जुड़ते हैं।
1: जी,
0: तो पुराना नाता है ना रेडियो से, और रेडियो रिमझिम से भी।
1: अभी बता दीजिए आपको कौन सा गाना सुनना है।
0: आज एक फिदा मूवी आई थी शाहिद कपूर की, उसी का एक गाना था इश्क है तो इसका इजहार कर।
1: हाँ,
0: यही वाला सुना दीजिएगा।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: सभी लिसनर्स को और थाने से रामा जी भैया को। उनके लिए एक शायरी बोलना है।
1: जी बोल दीजिए।
0: क्योंकि वो भोजपुरी में बात करते हैं, अच्छा लगता है। वो आते ही अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसके बाद से बोलते हैं नाम, इतना अच्छा लगता है बोलते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छा लगता है भोजपुरी में जब बोलते हैं।
0: और एक चीज उनके साथ और भी है कि बहुत सारे लिसनर्स उनको याद करते हैं, चाहे सोनी जी का शो हो उसमें भी और रेडियो में आपका मतलब कॉलिंग वाले में भी। हाँ, तो उनके लिए एक भोजपुरी में शायरी हम बोलेंगे कि सोना के साइकिल चांदी के पहिया, रामा जी भैया रउआ से भेंट हुई कहिया।
1: अच्छा जी,
0: जी उनको भी डेडिकेट रहेगा बाकी सारे लिसनर्स।
1: ओके, चलिए बढ़िया है
0: जी।
1: तो गाना प्ले करें
0: जी,
1: तो सुनते रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
6: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
10: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
12: भरोसे वाले से लेंगे,
11: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
12: और कीमत भी।
11: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
13: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
14: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
15: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
16: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 8570-32042 पे।
17: Now pick your phone up.
18: Hello?
17: Pick it up, pick it up.
18: Hello?
17: Now pick your phone up.
18: Hello?
19: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
20: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
21: नमस्ते,
22: नमस्ते। बोला जी, बोलता
21: है। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
22: जी, क्या हाल से हो आप?
21: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
22: बढ़िया।
21: तो क्या हो रहा है अभी?
22: अभी क्या होगा, धूप तो बहुत तेज निकला है, घर पे आराम कर रहे हैं।
21: धूप तो बहुत तेज है,
22: जाना मुश्किल है।
21: आराम कीजिए।
22: पंखा चल रहा है, आराम कर रहे हैं।
21: तो नाश्ता हो गया आपका?
22: हाँ, नाश्ता खाना सब कुछ हो गया।
21: चलिए बढ़िया है फिर तो, आराम कीजिए और बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
22: गाना सुनना है दूल्हे का चेहरा सुहाना लगा है, दुल्हन का जो फिर दीवाना लगा।
21: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
22: अरे जो पूरे टीम सुनी है, हम सुने रोबा सुने हैं, तो जितना आदमी जुड़ल वो सबको सुनी।
21: जी जी, तो गाना प्ले करें।
22: हाँ हाँ,
21: नमस्ते रेडियो रजनी में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में। नमस्ते।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: लाल बाबू से बोला है।
0: हाँ कैसे हैं आप?
1: ठीक है, आपने बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ। क्या हो रहा है अभी?
1: अभी बैठे हैं, थोड़ा धूप में लग रहा है, काम हो रहा है, चल रहा है। बंधन फिल्म का बिल्कुल।
0: और कौन सा सॉन्ग उसका?
1: बंधन बंधन यही लाइन है गाने वाले का।
0: ओके। और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है? बता
1: दीजिए। रुपी है, विकास, शबीर, रफीक, मोहम्मद अली, राजन की राजन प्रसाद है, राहत है आपका टीम है।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
5: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
5: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
5: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ, विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
8: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
11: अस्सलाम वालेकुम।
10: वालेकुम अस्सलाम।
11: बोले क्या समाचार?
10: ठीक बापन बताएं।
11: हम लोग ठीक बात है। गाना सुना दे पहले।
10: जी कौन सा गाना सुने?
11: तो हम लोग गाना बजाते याद हो गया।
10: कौन सा गाना?
11: ये थी कमर में साड़ी आला।
10: अच्छा जी, सॉन्ग के होगा सुना हूँ के बाद।
11: सॉन्ग के सुना है बाबा, जो सुन यार बाबा सुना है बस।
10: अच्छा जी, और सब बढ़िया बा?
11: सब बढ़िया बा, सब बढ़िया बा।
10: तब चले गाना प्ले करते।
11: ठीक है, ठीक है,
10: सुनत रहे सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो मैम
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4। वालेकुम अस्सलाम।
0: हम रोशनी बोल रहे हैं।
1: और कहाँ से हैं आप? रोशनी से
0: पैठान पट्टी से।
1: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: तेरी गली सूटे को बहन जब।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: हाँ
1: बता दीजिए।
0: आलिया का उसी को और ऐसा को और मेरे आपको
1: सुनत रहे सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान।

0: इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब टैबलेट इंजेक्शन सिरप गांजा स्माइक के इलाज और गठिया साइटिका पथरी कमर दर्द घुटना दर्द दमा मिर्गी दाद दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया मासिक खराबी बवासीर पेट रोग शुगर गैस्ट्रिक शीघ्र पतन शुक्राणु में कमी नपुंसकता धातु चिंता और चर्म रोग में दाग दिनाए खुजली एक्जिमा सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 90971602।
4: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो MGM 94.4 FM पे। समय 9:20 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज का नंबर है 7277165। ध्यान रखना कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो आप लोग से ये बातें हर रोज़ सजा की जाती है, बताई जाती है कि पुराने गाने की फरमाइश करना है, ओल्ड इज़ गोल्ड या 90s की, और पुराने गाने के साथ इंजॉय करना है। कुछ श्रोतागण ऐसे भी है जो नए गाने को लेकर अपने लाइन में खड़े इंतज़ार करते हैं और अंत में होता यही है कि गाने की फरमाइश पूरी नहीं हो पाती है। तो आप जैसे कार्यक्रम चले वैसे गाने की फरमाइश करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरा करने का प्रयास रहेगा। कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और पहला मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, मेरा सॉन्ग सुना सकते हैं क्या। बिल्कुल क्यों नहीं सुना सकते हैं, सबकी फरमाइश पूरी करेंगे और आपका क्यों नहीं करेंगे। जैसे मैसेज पहुंचेगा, जैसे गाने के फरमाइश वैसे पहुंचेगा, वैसे वैसे सबकी फरमाइश पूरा करने का प्रयास रहेगा मेरा। और इस मैसेज को करती हैं सोनी और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि और बीते हुए कार्यक्रम को लेकर अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि बेस्ट ब्रहा लगा मैं सनी राज पटेल। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हाय सर, मैं सुजीत कुमार नरेनिया से और मुझे गाना सुनना है। और गाने का बोल देते हैं हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें। कहते हैं कि सर पहली बार मैसेज किया हूँ, प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है 7277165 पे। फिलहाल सुजीत जी के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं रेडियो MGM 94.4 FM पे।

कमाल का शाम रेडियो रेमझिम 90.4 एफएम पे सुन रहे हैं हम सभी और अलका याग्निक उदित नारायण जी की आवाज़ों में और इस गाने की फरमाइश करने वाले सुजीत जी नरेनिया से। और काफ़ी प्यारा सॉन्ग रहा आपके द्वारा सुजीत जी। और आगे बढ़े तो यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचे हुए, तो आगे भी गाने की फरमाइश पूरी करेंगे। लिखा गया है कि नमस्ते सर, मुझे भी गाना सुनना है और गाने का बोल है बंधन बंधन प्यार का बंधन। इस मैसेज को करती हैं काजल गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले होगी। और यहाँ पे आगे भी मैसेज पहुँचे हुए हैं और लिखा गया है कि हेलो सर, मैं नीतीश कुशवाहा रामचंद्रपुर से और हीरो पुराना मूवी का सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल प्ले करने की कोशिश रहेगा। यदि आप लोग पुराने गाने के फरमाइश करते हैं तो एकदम गाने के फरमाइश पूरा किया जाएगा। आप सभी से हर रोज़ बताई जाती है कि आप लोग इस कार्यक्रम में स्पेशली पुराने गाने के फरमाइश करें, 90s के गाने या ओल्ड इज गोल्ड। जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहता है, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, वो अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है सोनू बाबू, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आप कौन, अपना भी परिचय दें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और काजल की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। बंधन बंधन प्यार का बंधन।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
9: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
9: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: क्या चाहते हो, मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
8: क्यों, क्या हुआ है?
7: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
8: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
7: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-30992 या 97-65-65-750।
11: रेडियो MGM 94.4 FM पे भोजपुरी प्यारा सा सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी और सोचा ला इसमें इस फरमाइश का, यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, टेक्स्ट मैसेज का नंबर है 72776-1665। ध्यान रखना है कि पुराने गाने की फरमाइश करना है। यदि आपको भोजपुरी पसंद है तो उसको भी पूरा किया जाएगा, बशर्ते आप पुराने गाने की फरमाइश करेंगे तो ही। आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है तो आगे मैसेज शामिल करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज नीतीश कुशवाहा जी किए हुए हैं रामचंद्रपुर से, और गाने की फरमाइश करते हैं हीरो ओल्ड मूवी से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे कुछ भी मैसेज और पहुँचे हुए हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं रोहित देहरादून से, और गाना सुनना है, गाने का नाम है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ जी हाँ प्यार करता हूँ। ये गाना घर की इज्जत फिल्म से है। तो चलिए बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है नमस्ते सोनू सर, में सोनू वर्मा जौनपुर से, और मुझे ये गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाँ भैया मुझको गाना सुनना है, मैं बुलेट चौधरी तीन भेड़िया से और भक्ति पवन सिंह के। तो कौन से गाने सुनने हैं यदि आप उस गाने के नाम बताते हैं तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और हाँ पुराने गाने के नाम बताना है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या जी गुस्सा है क्या, तो हम क्यों गुस्सा होंगे, सबकी फरमाइश आएगी, सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा मेरा। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि हिंदी फिल्म का गाना है पुराना वाला, मुझको जीना है जीने दो, बेस्ट चंपारण से इस मैसेज को करते हैं। अपना नाम तो नहीं दिए हुए, तो फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, नाम बताया और आपकी भी फरमाइश हम पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि थैंक्स गाना बजाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और नीतीश जी के गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, हम सभी इंजॉय करते हैं रेडियो रेमझिम।

रेडियो एमजी 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है रोहित जी की, और अभी हम काफ़ी प्यारे गाने सुन रहे थे हम सभी, और शो एसएमएस फरमाइश के साथ आप सब बने हुए। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे गाने के फरमाइश रोहित जी की पूरा करेंगे, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है इज्जत मूवी से, और गाने का बोल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ जी हाँ प्यार करता हूँ। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है, और लिखा गया है कि दिल में तुझे बिठाकर, गाना सुरेश साहब त्रिबिरवा से करते हैं मैसेज। तो बिल्कुल सुरेश साहब जी, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सभी रोहित जी के गाने के साथ रेडियो 90.4 FM पे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
3: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
2: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
4: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड, यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99393965923।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
9: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: Excuse me, boss. You have a text message.

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का और आगे कई मैसेज पहुंचे हुए, लेकिन मैसेज शामिल करने से पहले आज हम फिर से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक छोटा सा सुझाव साझा करेंगे आप सभी के बीच में। और आज हम सभी जानेंगे काला ज्वार के बारे में और काला ज्वार क्यों होता है, कैसे होता है, पूरी जानकारी साझा की जाएगी एक दूसरे से। और काला ज्वार एक गंभीर संक्रामक रोग है जिसे विसरल लिस्मेनियसिस भी कहा जाता है। यह परजीवी के कारण होता है, बालू मक्खी के काटने से फैलता है। भारत में यह रोग विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। कारण संक्रमित बालू मक्खी के काटने से, गंदगी और अस्वच्छता वातावरण के कारण होता है, कुपोषण और कमजोरी प्रतिरक्षा की शक्ति के कारण होता है। इसके लक्षण हैं लंबे समय रहने वाला बुखार, वजन कम होना, कमजोरी और थकान महसूस करना, भूख ना लगना, तिल्ली और यकृत का बढ़ जाना, त्वचा का रंग कुछ मामलों में गहरा पड़ना, जिससे इसका नाम काला ज्वार पड़ा। उपचार इसके हो सकते हैं डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवाओं का पूरा कोर्स करना, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त मात्रा में आराम करें, समय पर जांच और उपचार करवाना। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर काला ज्वार की जांच और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। किसी भी आप स्वास्थ्य केंद्र पर PHC या सदर अस्पताल में आप जाएं, इसका उपचार निःशुल्क है और साथ ही साथ इसका फुल कोर्स दवा चलाने का सरकार प्रयासरत है। आप यदि जाते हैं तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप केवल रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका जानकारी आप स्वास्थ्य कर्मी को दें और डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर के सलाह के अनुसार अपने आप को रखें। बचाव के उपाय, घर और आसपास साफ सफाई रखें, बालू मक्खियों से बचाव के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, दीवारों और घरों के कीटनाशकों का छिड़काव करें, रोग के लक्षण देखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। ये सारे इसके घरेलू उपाय हैं। यदि आप इसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो काला ज्वार होने से पहले अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप लोग रेडियो रिमझिम के माध्यम से जो भी सुझाव साझा की जाए स्वास्थ्य सही लाभ कही के अंतर्गत, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना है और अपने जीवन में इसको अपनाना है। अपने जीवन के साथ साथ अपने आस पड़ोस के जो भी व्यक्ति हैं उनको भी बताना है, और आपको ऐसा लक्षण किसी भी व्यक्ति में देखे तो उसको प्रेरित करना है कि आप इसे दबाए नहीं, आप तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और इसका जांच कराएं। इसका जांच निःशुल्क है, किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी जानकारियां हर रोज़ दी जाएगी। तो फिलहाल हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और कार्यक्रम में जो भी मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करेंगे। फिलहाल अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सोनो भैया जी आपका गाना प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश करते हैं सोनू वर्मा जी जौनपुर से, और कहते हैं कि मुझे पृथ्वी मूवी का सॉन्ग सुनना है, जिस घड़ी तुझको तेरे रब ने बनाया होगा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे सोनू जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी गाना सुना दीजिए। बिल्कुल एक एक करके सबकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें, आपकी भी फरमाइश हम प्ले कर देंगे। फिलहाल हम सोनू जी की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं, इनकी फरमाइश के साथ इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो एमजीएम 90.4 FM।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
6: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
6: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम, आपका अपना सो योर वॉइस योर चॉइस का। 12:01 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और अभी से लेकर 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़

0: नहीं आप सभी के पास ऐप कैसा चल रहा है, और तब तक आप सभी की मैसेज आती है तब तक हम एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा गाना सिर्फ और सिर्फ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे है।
1: मुंह तो बंद करो अंकल।

0: और नैने
1: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो टिमसिम 90.4 एफएम पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में 12:08 हो चुके हैं स्टूडे घड़ी में और अभी से लेकर 4 बजे तक मैं आप सभी के साथ हूँ, आपकी फरमाइशों के साथ हूँ। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे सो में जुड़ सकते हैं और नंबर है व्हाट्सएप के लिए 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करिए, हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ, या फिर रेडियो रिमझिम के इंस्टाग्राम पे जाइए डायरेक्ट मैसेज करिए, अपने गाने की फरमाइश को सुनिए। और व्हाट्सएप और इंस्टा नहीं यूज करते हैं तो आपके लिए कॉल का माध्यम है, नंबर है 7277166696 पे कॉल करिए और जुड़ जाइए अपने सो योर वॉइस योर चॉइस से। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे अपना, तो काफ़ी सारे मैसेज है और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज पहुंचा हुआ है। संजय यादव हैं, जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, और क्या हाल है मैम, नाइस ओपनिंग सॉन्ग। तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे तो यहाँ भी मैसेज है और मैसेज है, लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, मैं अनिश यादव विलेज दुमरा यदुवंशी टोला सिवान बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका। समीर आलम जी हैं जंगलिया से, बहुत बहुत स्वागत आपका और गाने की फरमाइश के साथ है, और रब करे तुझको भी प्यार हो जाए गाने की फरमाइश है और डेडिकेट है, लिख रहे हैं कि आपको और सभी सुनने वाले को। तो बिल्कुल फरमाइश है, प्ले करने की पूरी कोशिश है। और यहाँ लिख रहे हैं कि सुनी जी नमस्कार, साध मास्टर ग्राम धनाव से, और आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ और सभी को जुम्मा मुबारक बोल दीजिएगा। बिल्कुल बोल चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं नमस्ते, हम पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा और नया सा लगाइए भोजपुरी गीत। और मैसेज करने वाले हैं राम कुमार जी दरभंगा से, बहुत बहुत स्वागत आपका, और नया भोजपुरी गीत लगाएंगे और नया पुराना जो भी लिसनर की तरफ से फरमाइश पहुंचेगी। फिलहाल बढ़ेंगे आगे, यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है और वॉइस मैसेज है, और कमलेश्वर कुशवाहा जम्मू से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका और फरमाइश है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश है, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, और शुभम निषाद जी जुड़ चुके हैं गनवरिया से, बहुत बहुत स्वागत आपका, और गनवरिया उत्तर प्रदेश से, और फरमाइश है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे। और आगे एक और यहाँ मैसेज आए, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, और जुड़ चुके हैं साथ में अंकित और प्रिंस से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि क्लियर साउंड ओपनिंग सॉन्ग अच्छा है, और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार, रमेश कुमार गुप्ता जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका रमेश जी। और आगे यहाँ एक और मैसेज है, लिख रहे हैं कि आज मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया सोनी दी। और गणेश कुमार है पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, और अनिल कुमार जी जुड़े हुए हैं दरभंगा से, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष सुजाग जी हैं फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो नमस्ते मैडम जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून मैडम जी। प्रीति रैदास जी हैं विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान से, और लिखते हैं कि आज मेरे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज मुझे एनिवर्सरी सॉन्ग प्लीज़ सुनवा दीजिएगा। बिल्कुल सुनवा देंगे, और आपके मम्मी पापा को शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी रेडियो रिमझिम की पूरी टीम के तरफ से। और आगे यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि 12:30 से 1:30 बजे तक हम आपका कार्यक्रम नहीं सुन पाएंगे। और मैसेज करने वाले हैं इरशाद मास्टर जी धनाव से जी, हाँ मुझे पता है क्योंकि वो टाइम आप लोगों का नमाज का होता है। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्यारी उद्घोषक महोदय जी और प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि हर बार दिल से ये पैगाम आए, जुबा खुलूँ तो तेरा ही नाम आए, तू ही क्यों भाए दिल को क्या मालूम, जब नज़रों के सामने हसीन तमाम आए हो। और मैसेज के साथ है मुकेश खरवार जी हिमाचल प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बढ़ेंगे आज की अगली फरमाइश यानी पहली फरमाइश की तरफ, और पहली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है, समीर आलम जी हैं जंगलिया से, और इनको सुनना है गाना रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे समीर आलम जी जंगलिया से, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच चुका है, लिख रहे हैं थैंक यू सो मच गाना बजाने के लिए, लेकिन गाना मैं अभी सुन नहीं पा रहा हूँ, प्ले करने के लिए थैंक्स। और गाना क्यों नहीं सुन पा रहे हैं ये ज़रूर बताइए, जबकि गाने की फरमाइश किए हैं तो गाना तो सुनना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, से पहले कुछ मैसेज है और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सोनी मैम, और मैसेज करने वाले हैं नाम मेंशन ही नहीं किए हैं, भैया नाम बताइए कि आप कौन है कहाँ से, और प्रोफाइल पे भी नाम दिखा रहा है महेश, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और नाम ज़रूर बताइए आप कौन है कहाँ से। और आगे यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि मैडम जी मुझे भी गाना सुनना है, लिंक भेज रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल भेज सकते हैं, मुकेश करवार जी हैं हिमाचल प्रदेश से। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, करण मुर्मू हैदराबाद से, और आज छत ढलाई का काम है, धूप में चल रहा है, और गाना सुनना है छुपा रुस्तम का प्यार में दिल, तो ये गाना सुनना है। और मेरे साथ है मिश्री किशोर चौधरी, पंकज चौधरी, अभिषेक चौधरी एवं रिंटू चौधरी, और हम सभी को ये गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ आगे मैसेज है, लिख रहे हैं कि गाना बहुत ही अच्छा लगा मैम, आपका आवाज़ भी बहुत अच्छा है। और मैसेज करने वाले हैं राम कुमार जी दरभंगा जिला से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ रोहित जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, लिख रहे हैं कि हो तेरा दिल भी जाना बेकरार हो ना जाए, रब करे मुझको भी प्यार हो ना जाए, नाइस सॉन्ग सोनी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक और यहाँ मैसेज है, और मैसेज है लिख रहे हैं कि प्रीति रदास जी के मम्मी पापा को शादी की सालगिरह की सुबेला पर प्रणाम, जीवन भर यूं ही बना रहे आपका प्रेम और खुशियां से महके हर सुबह और हर शाम, संग साथ आपका मिसाल बने दुनिया के लिए, विश्वास और अपनापन सदा बना रहे, ईश्वर की कृपा से घर आंगन में सुख शांति और समृद्धि सदा सजा रहे, हर वर्ष नई खुशियां लेकर आए, हर सपना आपका साकार हो जाए, शादी की सालगिरह पर ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका जीवन प्रेम और आनंद से भर जाए। और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी लुधियाना पंजाब से, और यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि कल वाला फरमाइश मेरा नहीं सुनाए थे, और अनिल कुमार जी है दरभंगा से, तो आज बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। और यहाँ इंस्टाग्राम मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ मैसेज है, और मेहताब सिद्दीकी जुड़ चुके हैं दुबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन है कहां से और गाने की फरमाइश क्या है।
1: मैडम जी कमलेश्वर कुशवाहा जम्मू से, हमको गाना सुनना है।

0: Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की

0: अच्छा राहुल, कुछ अपने बारे में बताओ ना।
1: मुझे फास्ट म्यूजिक अच्छा लगता है। I like beats, fast beats।
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

हमारे मुकद्दर में तो तुम यूं ही चली आई। लगता है खुदा ने अपने मासूम बचपन को बहलाने के लिए एक खूबसूरत खिलौना तराश रखा है।

0: दो शराबें मिल गई, सो नशा भी दुगना, तू गुलाब की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल, शराब की बो
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: on the bell icon to get regular updates from Venus.
1: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
2: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

रूपी तोता ना जाने कब उड़ के कहां चल जाइए। एक केहू नहीं खे जानत आ कहां चल जाई ई भी केहू नहीं खे जानत। कैसे

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: देखी ये दुनिया माया के है आ कैसे में कहतड़े कवि के का कहना बा शेरबा। अरे नर मूरख कब तक जग में और जीवन व्यर्थ

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: अच्छा गौर करी, हम ब्यास गायक अवधेश सलबेला अरवा सबके बीच गुंजन म्यूजिक के माध्यम से एगो कबीर दास के भजन भेज रहल बानी। आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि हमरा के रवस मन प्यार दिला दे। हम एगो जीव रूपी दुल्हन अपना बलबुआ के याद करके अपना मन में विचार कर रही बड़ी
2: हो नहीं हर

और गीत के रिकॉर्डिंग गुंजन स्टूडियो हुसैनगंज के माध्यम से हो रहा है। जेकर प्रोप्राइटर डायरेक्टर हमारा डॉक्टर डीएन सिंह राठौर जी बानी।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पे। और कुछ समय के लिए हमारा प्रसारण तकनीकी कारणों की वजह से विद्युत की कुछ समस्या आई थी, जिसके कारण से बंद रहा लगभग 3 घंटे तक। इसके लिए आप सभी से हम तहे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं और पूरी दिल से माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। और फिर से आप सभी के बीच हाजिर हो गए हैं आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस को लेकर के। आपकी अपनी आरजे सोनी आप सभी के बीच उपस्थित हो चुकी है और आपको अगर शो में जुड़ना है तो शो में फिर से जुड़ सकते हैं। और माध्यम वही है व्हाट्सएप इंस्टा कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए नंबर है 9857788291 पे व्हाट्सएप मैसेज करिए या फिर अपनी आवाज़ में एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए अपने नाम पता और गाने की फरमाइश के साथ। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 7277165696 पे और जुड़ सकते हैं अपने शो योर वॉइस योर चॉइस से। और लेट हुई इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, शो बंद रहा, लेकिन उसके लिए खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। और जो शो 4 बजे तक चलता था आज उस शो को 5 बजे तक कर दिया गया है, तो आप सभी हमारे साथ 5 बजे तक जुड़ सकते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। तो चलिए आप सभी फिर से मैसेज करिए, जुड़ जाइए शो से और बढ़ते हैं आगे आज की शो की फिर से एक बार आगाज करते हैं, शुरू करते हैं एक बढ़िया सा गाने के आवाज़ में। और गाना है अरविंद अकेला कलू के आवाज़ में, इंजॉय करते हैं। तब तक आप सभी मैसेज करिए और जुड़िए अपने शो से, तब तक गाना सुनते हैं रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पे।

0: दे हम बुझला।
1: एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे। और हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुंच चुके हैं और हमारे काफ़ी सारे श्रोता जुड़ भी गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और आप लोगों को जो इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपके इंतज़ार के लिए आज का शो का टाइम एक घंटा बढ़ा दिया गया है और सिर्फ आज के लिए, क्योंकि जो तकनीकी दिक्कत आई थी उसके वजह से जो लेट हुआ शो में 3 घंटा बंद रहा, उसके लिए सिर्फ आज के लिए समय बढ़ाया गया है। बाकी दिन जो समय है 12 से 4 वही रहेगा। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज है, आरजे अमन जी जुड़ चुके हैं बढ़िया सिवान से। एक और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि हेलो राधे राधे, और पाजी यूपी चौहान से हैं, लिख रहे हैं मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। बिल्कुल लग चुका है आपका हाजिरी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मनीष रजाक जुड़ चुके हैं फाजिलनगर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और यहाँ इरशाद मास्टर जी हैं ग्राम धनाव से, लिख रहे हैं कि कार्यक्रम चालू हो गया, आपकी आवाज़ भी आ रही है जी। हाँ चलिए, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। और आगे यहाँ मैसेज है, उपेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं अरौली से, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और फरमाइश के साथ है तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करिए, बने रहिए साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से, और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप है, कॉल है, इंस्टा है, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और अभी हम फरमाइश प्ले करने जा रहे हैं, आरजे अमन जी जुड़े हुए हैं बढ़रिया सिवान से और इनको सुनना है गाना, तो चलिए आपकी भी जो गाने की फरमाइश है प्ले कर दिए। इंजॉय करिए अपने गाने को और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम को।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी हम गाना सुन रहे थे, आरजे अमन जी की फरमाइश थी बढ़िया सिवान से, और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और यहाँ धर्मेंद्र शाहनी समस्तीपुर से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंद्र देव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और यहाँ मैसेज है, और विपुल जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिर लगा दीजिए, तो बिल्कुल आपकी हाजिर लग चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और कॉल वाले लोग आप लोग दिख नहीं रहे हैं, आप लोग भी जुड़िए अपने गाने की फरमाइश के साथ। और यहाँ अगली फरमाइश हमारे पास वॉइस के माध्यम से पहुँचा हुआ है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और उपेंद्र कुमार जी जुड़े हुए हैं, इनको सुनना है गाना। तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हेलो मैम, मेरा नाम उपेंद्र कुमार है, रलीदान कुशीनगर यूपी से। मुझे गाना सुनना है हिंदी सॉन्ग, कोई पिए बिस्की कोई पिए रम दिल मांगे, इस तरह का गाना है। प्लीज मैम गाने को सुनना है हिंदी सॉन्ग, कोई पिए बिस्की कोई पिए रम दिल मांगे, इस तरह का गाना है। प्लीज मैम गाने को प्ले कर दीजिएगा सोनी जी।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद के ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आ गइल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीर फाड़ कइले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69 015 पे।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। 3:30 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और जो हमारी तकनीकी कारण के वजह से 3 घंटा लगभग रेडियो शो बंद था, उसके लिए आप सभी के दिल से माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। और आज का शो 4 से 5 तक कर दिया गया है, और आप अपना शो सुन सकते हैं 5 तक आज और हमसे जुड़े रह सकते हैं। और यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि मैम आपकी कैटेगरी क्या है और आपका आवाज़ की, आप तो आवाज़ की देवी हैं, तो भैया हमारी कैटेगरी क्या है, इससे क्या करिएगा, मेरा शादी लगवाने का विचार चल रहा है क्या, ज़रूर बताइए, फिर हम अपनी कैटेगरी बताएंगे। और रुपेंद्र कुमार जी हैं अरेली कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े। और आगे यहाँ है मैसेज लिख रहे हैं कि कॉल करें मैडम जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप कॉल और गाने की फरमाइश है तो। और आगे यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग और अहमद अली हैं सारे अवार्ड नंबर 1 से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैसेज है कि मैम से भी गलती होती है क्या, और किस गलती की बात कर रहे हैं आप, गलती के लिए माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, जो हमारे यहाँ तकनीकी व्यवधान आई थी उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी से, और गाना सुनना है तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश प्ले करेंगे। और यहाँ और भी सारे मैसेज है शामिल करेंगे, उससे पहले कॉल पहुँचा हुआ है तो चलिए बात करते हैं कौन है, कहाँ से जानते हैं और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो,
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम में।
1: क्या हाल है?
0: बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसी हैं? नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से। आपकी आवाज़ कट रही है।
1: हेलो,
0: हाँ
1: मेरा नाम मुन्नी है।
0: अच्छा, और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: गोपालगंज से।
0: गोपालगंज से, तो गाना कौन सा सुनवा दे आज आपको?
1: एक गाना नहीं है, देश के तरवाली वाली आवाज़ सुन के।
0: फिर से बोलिए तो।
1: देश के कोनवाली वाली आवाज़ सुना दिया।
0: गाना सुनी है?
1: हाँ सुने हैं, अच्छा गाना है, खराब।
0: किसके आवाज़ में है? हेलो,
1: हाँ जी बोलिए।
0: बोल रहे हैं गाना किसके आवाज़ में है?
1: टुनटुन यादव के।
0: किशोर यादव?
1: नहीं, टुनटुन यादव।
0: टुनटुन यादव,
1: हाँ
0: टुनटुन यादव की आवाज़ में तो गाना नहीं आ रहा है।
1: एनयू गाना निकला है।
0: एक मिनट, पूरा गाना सुनी है आप?
1: हाँ पूरा गाना नहीं सुने, रील में देखे गाना अच्छा है खराब।
0: जनता दरबार है क्या गाना का नाम? आप जो गाना बोल रही हैं वो गाना किसी और सिंगर की आवाज़ में आ रहा है, और बाकी अगर टुनटुन यादव का गाना के नाम से सर्च कर रहे हैं तो वो तो गाना नहीं आ रहा है। आप गाने की फरमाइश चेंज कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि गाना सही है नाम से।
1: मैं तो कोई गाना सुना दीजिए उनके आवाज़।
0: किसके आवाज़ में?
1: टुनटुन यादव के।
0: टुनटुन यादव की आवाज़ में कोई भी गाना?
1: हाँ।
0: और सुनाना भी है
1: आपको?
0: चलिए तो प्ले कर रहे हैं गाना, बहुत बहुत धन्यवाद शो में कॉल की।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी, और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे हम सभी, और गाने की फरमाइश पहुंची थी कॉल के माध्यम से। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं, क्या मैम आप भी रंगदार हैं क्या, वाह मैम आपकी पसंद। और क्या करे पसंद, टुनटुन यादव का गाना कोई ढंग का मिलता ही नहीं है, जो मिला वो चला दिए। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग है ये, और अहमद अली जी हैं सारे अवार्ड नंबर एक से एक। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है और लिख रहे हैं कि हेलो हाय गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं। और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, मैं भी जुड़ गया हूँ। और शाजदा अंसारी हैं मीरगंज से, बहुत बहुत स्वागत आपका शाजदा जी, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम के। और यहाँ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और विद्या निवास जी जुड़े हुए हैं मऊ जिला से, बहुत बहुत स्वागत विद्या निवास जी आपके। और आपके गाने की बात करें तो बुधवार को आपके गाने की फरमाइश प्ले किए थे, तो अगली फरमाइश एक सप्ताह बाद ही प्ले हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शो में जुड़े और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है। और फरमाइश करने वाले हैं, नाम है इनका पाजी यूपी से जुड़े हुए हैं, तो सुनते हैं कौन से गाने की फरमाइश है इनकी तरफ से।
1: हेलो मैम, राधे राधे, मैं पाजी यूपी चौवन से। मैम मुझे एक गाना सुनना है, कसूर मूवी का गाना है मैम, मोहब्बत हो ना जाए। प्लीज मैम कोशिश करिएगा कि आज सुना दीजिए। और गाना सुनने वाले हमारे विद्या निवास चाचू जो इंदौर में रहते हैं, इस समय चले गए हैं। और हमारे साथ में आनंद है, शिवम है, और अंकित है, अमन है, रोशन है, अमरजीत है मैम, और अरुण है, सोनू है मैम। इस समय बैठे हम लोग हैं अपने बगीचे में, और साथ में सुनने का बहुत मन कर रहा है गाना। प्लीज़ सुनाइएगा ज़रूर मैम, प्लीज़।

0: और यहाँ थैंक यू का मैसेज पहुँच चुका है पासी यूपी से हैं, और इंजॉय करिए। फिर मिलते हैं आप सभी से इस गाने के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
9: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
12: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क 99-393-65-930।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में 3:48 हो चुके स्टूडियो घड़ी में। और आज का शो जो तकनीकी व्यवधान की वजह से बंद रहा, उसके वजह से 4 से 5 तक कर दिया गया है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं शो में जुड़ने के लिए माध्यम है व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉल, आप जिस माध्यम से चाहे जुड़ सकते हैं। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। मैसेज लिख रहे हैं कि आज का शो देर से शुरू हुआ है क्या मैम? और उमाशंकर मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत उमाशंकर जी। देर से नहीं शुरू हुआ शो, बिल्कुल समय पे शुरू हुआ था, लेकिन बीच में कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण शो को वहीं पे रोकना पड़ा और फिर से कंटिन्यू हो चुका है। और कंटिन्यू होने के बाद 4 से 5 तक कर दिया गया है, तो शो में आप जुड़ सकते हैं। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है व्हाट्सएप के माध्यम से, और गाने की फरमाइश है। इंद्रदेव जी जुड़े हुए हैं और इनको गाना सुनना है दबे पाँव यह नजरिया बचा के। तो चलिए गाना प्ले कर दिया, आपकी इंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, इंद्र देव जी की फरमाइश थी और उनके तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए, थैंक यू। और बढ़ेंगे आगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश से पहले यहाँ मैसेज है और वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश के साथ है। तो विदा निवास जी, हम आपकी गाने की फरमाइश है, अभी एक सप्ताह नहीं हुआ है तो प्ले नहीं कर सकते। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि भरोसा एक बार टूट जाए तो दिल डरने लगता है। बार बार शक इसलिए नहीं होता कि इंसान बुरा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कभी सच्चे दिल पे भरोसा किया था। और दिमाग भूल सकता है पर दिल उस दर्द को हमेशा याद रखता है, इसलिए भरोसा मिले तो उसे कभी मत तोड़ना। और मैसेज के साथ है विदा निवास जी मऊ ज़िले से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है मनीष रजाक हैं फाजिलनगर कृष्णनगर उत्तर प्रदेश से, उनका सुनना है गाना। तो चलिए आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी। और गाने की फरमाइश से रितेश पांडे की आवाज़ में एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: का पहला ही कॉलर।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
0: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
0: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
0: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
0: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
0: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में आपके अपने शो योर वॉइस योर चॉइस में। और हाँ, 3:59 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में और व्हाट्सएप मैसेज की तरफ रुख करेंगे तो काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं। लिख रहे हैं कि एक बार मेरा फरमाइश बजा दीजिए, और मैसेज करने वाली हैं शारदा अंसारी जी मीरगंज से। बिल्कुल आपकी फरमाइश है, प्ले करेंगे, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और आगे हाँ मैसेज है, लिखते हैं कि सोनी मैम मेरे साथ धोखा हो रहा है, बताइए। और अंतरा सिंह के गाना बजा के गर्दा मचा दिए हैं, तो ये हम अपने मर्जी से नहीं बजाएं अंतरा सिंह का गाना, और ये गाने की फरमाइश करने वाले थे मनीष जजाक जी फाजिल नगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से। और इनकी तरफ से भी मैसेज पहुंच चुका है, लिख रहे हैं गाना बजाने के लिए धन्यवाद। और दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सुनी से हमारा भी गाना बजा दीजिए, बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे। एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि मैम एक और गाना बजाइएगा क्या, बिल्कुल नहीं आज तो बिल्कुल नहीं। और मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी से। और शो का रूल जो है, रूल है वो सबको फॉलो करना है। और आगे यहाँ एक मैसेज है, लिख रहे हैं कि हाय रहीम आलम प्रोफाइल पे नाम दिखा रहा है, अपना नाम पता जरूर मेंशन करिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ मैसेज है, राम कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लिख रहे हैं कि हमारा भी गाना बजा दीजिए थोड़ा सा, तो बिल्कुल आपकी भी गाने की फरमाइश जो है प्ले करते, लेकिन बुधवार को ही किए हैं और आपका एक सप्ताह अभी नहीं हुआ है, जैसे ही एक सप्ताह होता है हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करते हैं। और यहाँ हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, मीरगंज से शारदा अंसारी है, और ज़िंदगी बन गए हो तुम गाने की फरमाइश के साथ जुड़ी हुई है, तो बिल्कुल चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे। सारे गाना

90.4 रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, गाने की फरमाइश करने वाली थी शाहिदा अंसारी जी मीरगंज से और लिख रहे हैं कि ओके डियर सुन रहे हैं गाना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से और इंद्रदेव जी हैं लिख रहे हैं कि सुपर हिट सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दिनेश मिश्रा जी हैं लिख रहे हैं कि ये आपको पता है कि आपकी आवाज़ के बिना मैं नहीं रह सकता, लेकिन एक घंटा मेरा खबर कर दिया और ख़राब कर दिया हो, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि ये गाना जिंदगी बन गए हो तुम ये आप पे ज़्यादा सूट करेगा। और बढ़ेंगे आगे यहाँ अगली फरमाइश की तरफ, उससे पहले यहाँ मैसेज लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं कि हमारे मामू जी का फेवरेट गाना है और मिस्टर जी का लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे हवा के झोंके से गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। और बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं, नाम मेंशन नहीं है और गाने की फरमाइश है। लिख रहे हैं कि नाम रही माला, तो नाम आपका रही माला है या फिर क्या है ज़रूर बताइए, एक बार कंफर्म करिए, या फिर मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है या फिर आप से टाइप गलत हुआ है ज़रूर बताइए। और बेंगलोर से जुड़ी है और गाना है लाल दुपट्टा उड़ गया तेरी हवा के झोंके से, तो बिल्कुल आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। थोड़ा इंतज़ार करिए, आपकी बारी आती है, हम आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले करेंगे। फ़िलहाल यहाँ कॉल पहुँचा हुआ है तो बात करेंगे, सुनेंगे कौन है कहाँ से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो हेलो अरे भाई कॉल किए हैं तो बोलिए तो। हेलो, और यहाँ हमारे पास कॉल पहुँचा हुआ है लेकिन कॉल करके चुप हो गए हैं, पता नहीं कौन है कहाँ से हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अगली फरमाइश की तरफ और अगली फरमाइश भी लेते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से ही। और रही माला जी है बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं और इनको सुनना है गाना लाल दुपट्टा, तो बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है प्ले कर दिए हैं। और बोल रही हैं कि ये गाना मेरे मामू का फेवरेट है और मिस्टर जी का भी, तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है वो प्ले कर दिए, एंजॉय करिए और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को।

शुजाक जी हैं फाजिलनगर कुशनगर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं कि लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से सुपर हिट सॉन्ग वेरी नाइस सॉन्ग। और आगे यहाँ एक और मैसेज है लिखे हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंजॉय करिए गाने की फरमाइश है रहीमाला जी की तरफ से बेंगलोर से, और एंजॉय करिए। और गाना ये भी सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
5: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
9: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
10: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
11: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
10: अरार मोड़ SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड़ के पास कुचाई कोर्ट,
11: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
10: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
11: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
10: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
11: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
10: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
11: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।

वेलकम बैक रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आप सभी का अपने पसंद का कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस में। और बढ़ेंगे आगे, हाँ, व्हाट्सएप मैसेज की तरफ। तो काफ़ी सारे मैसेज है और मैसेज है यहाँ लिख रहे हैं कि मैं करण कुमार और मेरा घर कोचपुर बाजार है, गोपालगंज बिहार के रहने वाला हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल दुबई से रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं और मुझे लिख रहे हैं कि मुझे भी एक गाना सुनना है अपने पसंद का, और चोर मचाए शोर सुनना है ये गाना। मैं दुबई में अपने गांव के सभी दोस्तों को, परिवार वालों को, सभी को डेडिकेट करना चाहता हूं, तो प्लीज़ मेरा गाना सुनवा दीजिए। बिल्कुल आपकी गाने की फरमाइश है, प्ले करेंगे, थोड़ा वेट करिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ फरमाइश से पहले मैसेज है, लिख रहे हैं कि हमारा गाना नाबाजी का बोरा में बंद करके रख दिए हैं क्या। बिल्कुल नहीं, बोरा में बंद किए हैं। और आपकी गाने की बारी भी आ चुकी है। और मैसेज करने वाले हैं धर्मेंद्र साहनी जी समस्तीपुर से। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं ये सोनी जी बहुत ही खूबसूरत गाना चल रहा है, इरशाद मास्टर धनाव से हैं। और आगे एक और यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सही में ज़िंदगी बन गए हो तुम, और बिल्कुल राइट। और आगे लिखते हैं कि बैंक से फ़ोन आया और मुझे कहा कि आप 6,000 रुपया महीना भरते रहिए और रिटायरमेंट के वक्त आपको 1 करोड़ मिलेगा। मैंने कहा कि प्लान को उल्टा कर दो, आप मुझे अभी 1 करोड़ दे दो और हम हर महीने 600 रुपया लेते रहें, हमसे हर महीने 600 रुपया लेते रहना। और मेरे मरने तक बैंक वालों ने फ़ोन काट दिया, मैंने कुछ गलत कहा क्या। बिल्कुल नहीं, आप तो बिल्कुल गलत नहीं कहते। और दिनेश मिश्रा जी हैं दिल्ली से। और यहाँ एक और मैसेज है, सिर्फ हेलो। और मैसेज करने वाले हैं सनी गोपालगंज से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि सच में मैम आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है। और मैसेज करने वाली हैं शारदा अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़ी। और अगली फरमाइश हम प्ले करेंगे, समस्तीपुर से गाने की फरमाइश पहुंची है। फरमाइश करने वाले हैं धर्मेंद्र शाहनी जी, और इनको सुनना है गाना जो अपना लगे उसे अपना बना लो। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, एंजॉय करिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और गाना सुन रहे थे अभी, गाने की फरमाइश करने वाले थे धर्मेंद्र शाहनी जी समस्तीपुर से और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम, और इंद्रदेव जी हैं जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना बजाने के लिए, मैसेज भी पहुंच गया है धर्मेंद्र शाहनी जी की तरफ से। और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं, सुनते हैं कौन है कहां से और गाने की फरमाइश क्या है। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: मेरा असद अली गोपालगंज सारे वार्ड नंबर 1।
0: जी कैसे हैं असद जी?
1: हम ठीक है, अपना बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या करते हैं आप?
1: स्टडी।
0: अच्छा, किस क्लास की पढ़ाई चल रही है आपकी?
1: सिक्स
0: की।
1: या
0: चलिए बढ़िया है। पढ़ाई कैसी चल रही है?
1: अच्छी चल रही है।
0: ये तो रेडियो रिमझिम को सुनते हैं?
1: हाँ।
0: कब सुनते हैं, कब कब?
1: मेरे अबू सुनते हैं और मेरी अम्मी भी सुनती
0: हैं। अच्छा, आपको कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है रेडियो रिमझिम का? हेलो
1: हेलो
0: अच्छा आप कंटिन्यू नहीं सुनते हैं, इसका मतलब?
1: हाँ कंटिन्यू नहीं।
0: अच्छा, कोई ऐसा कार्यक्रम जो आपको अच्छा लगता हो? नहीं पता?
1: नहीं।
0: चलिए कोई नहीं, अभी कौन सा गाना सुनिएगा आप?
1: अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है, अजय देवगन का है जिगर फिल्म का।
0: और सुनवाना भी है?
1: हाँ। आपको सबसे पहले आपको आपके पूरे टीम को, अहमद अली को और अस्तरी खातों को और जो भी रेडियो वाले सुनने वाले हैं उन सभी भाइयों बहनों को
0: प्ले करे गाना।
1: हाँ
0: चलिए प्ले कर दिया गाना, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। वेलकम,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबू, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुत डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042434003 6200042434003।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: ब्रेक हो गया, खत्म। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के बीच रेडियो रंजीम 90.4 FM पे, आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और 4:33 हो चुके हैं स्टूडियो घड़ी में, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि सोनी मैम आज टाइम आप भूल गई हैं या हम भूल गए हैं, 4:30 हो गया है। तो दिनेश मिश्रा जी, ना ही टाइम आप भूले हैं और ना ही हम भूले हैं, जो तकनीकी कारण के वजह से 3 घंटा लगभग हमारा रेडियो शो बंद था, उसके वजह से आज समय जो है 4 से 5 तक बढ़ा दिया गया है 1 घंटा, और इसलिए ना समय आप भूले हैं ना हम, और 4:30 हो गया है और अभी तक शो चल रहा है। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है अहमद अली है सारे वार्ड नंबर 1 से, लिख रहे हैं कि मेरा नाइस सॉन्ग मेरे बेटे का फरमाइश है सुपर से ऊपर, और ये पहली बार कॉल किया था, और मैं कह दूँ कि हर काम जो होता है वो एक ना एक बार पहली बार होता है, पहली बार के बाद ही दूसरी बार होता है, और काफ़ी बढ़िया गाने की फरमाइश के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बढ़ेंगे आगे, यहाँ मैसेज है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम हमारा नंबर कब आएगा? तो बिल्कुल आपका भी नंबर आएगा, सोनू कुमार जी हैं गौसिया से, बहुत बहुत स्वागत आपका, बने रहिए हमारे साथ में, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम को। और यहाँ अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे, और अगली फरमाइश जो हमारे पास पहुँचा हुआ है वो है दुबई से, सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम को, और ये बथुआ बाजार के रहने वाले हैं, और नाम है इनका करण कुमार जी, और इनको सुनना है गाना चोर मचाए शोर। तो चलिए आपकी गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दी, एंजॉय करिए रेडियो 90.4 FM पे।

0: 90.4 रेडियो रंजन सुन रहे आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे, करण कुमार जी की फरमाइश थी और इन्होंने गाना सुन लिया है। बढ़ेंगे आगे, यहाँ अनिल जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और दरभंगा से जुड़े हुए हैं और बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है कॉल के माध्यम से, तो चलिए बात करते हैं कौन है, कहाँ से जानते हैं। हेलो
1: जी। हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमसी में।
1: जी सोनी जी,
0: जी
1: चलते चलते तकनीकी में कुछ गड़बड़ हो गया था ना, असल प्रोग्राम जो है हो गया था।
0: अचानक से सब बंद हो गया
1: अचानक। हाँ, एक पे एक हम लोग सोचे भाई चलता, अभी बज रहा था, चलते चलते गाना के लिए आ रहा था।
0: वॉइस भी प्ले किए थे गाना के लिए और उसी टाइम पूरा सिस्टम बंद हो गया।
1: हम तो सोचे कि हम नहीं चलेगा, लेकिन फिर आए 2 बजे के नमाज पढ़ने के बाद, खाना खाने के बाद फिर चालू हुए, तो फिर चिक हुआ। अच्छा, तो ऑनलाइन सब चल ही रहा था, दिख ही रहा था।
0: तो ऑनलाइन ऑटो गाना चल रहा था ना, कंटिन्यू गाना चल रहा होगा।
1: अरे मशीन इलेक्ट्रॉनिक चीज है, ये है
0: वो लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, करंट ही नहीं पास हो रहा था इधर, इसीलिए नहीं चला।
1: चलिए तो जाते जाते वो गाना सुना दीजिए। आते आते तेरी याद आ गई, जाते जाते मुझे तू भुला गई।
0: ओहो
1: लास्ट में इसीलिए नंबर आप 3 बार रेडियो हमारे साथ रहता है, एकदम कंटिन्यू काम करते रहते हैं।
0: चलिए तो गाना प्ले कर दिया, डेडिकेट भी करिएगा
1: जी आपको, फिर सुनवाएंगे। और ये रामा जी प्रसाद को अभी तो दुकान में होंगे, अपने किराना दुकान में।
0: अभी वो दुकान पे ही होंगे।
1: ठीक ठीक है, और जितने रेडियो रेंजर सुनने वाले सभी भाइयों को
0: चलिए तो प्ले कर दिया गाना आपकी।
1: ठीक
0: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोमे कॉल किया।

0: व्यवस्था एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
10: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
3: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।

वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में आपके अपने सो योर वॉइस योर चॉइस में। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज की तरफ बढ़ेंगे तो अभी भी काफ़ी सारे मैसेज हैं हमारे पास और फरमाइशें भी, और समय काफ़ी कम है फिलहाल। यहाँ जुड़े हुए हैं रवि जी दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत आपका। और लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्कार, रवि तिवारी और हम भी जुड़ गए हैं और काफ़ी बिजी थे और इस बिजी समय में से रेडियो रिमझिम के लिए समय निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगली फरमाइश की तरफ रुख करेंगे और अपना, और अगली फरमाइश जो हमारे पास है वो है सोनू कुमार जी जुड़े हुए गौसिया से, और इनको सुनना है गाना, और गाना है पिया पिया ओ पिया। तो चलिए आपके गाने की फरमाइश जो है प्ले कर दिए, इन्जॉय करिए रेडियो।

90.4 रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी और कार्यक्रम है योर वॉइस योर चॉइस का। और अभी गाना सुन रहे थे सोनू कुमार जी की फरमाइश थी गौसिया से और इन्होंने गाना सुन लिया है। और यहाँ रबी तिवारी हैं दिल्ली से लिख रहे हैं कि गधा मेरा मालिक मुझे बहुत पीटता है तो कुत्ता तुम भाग क्यों नहीं जाते। फिर गधा बोलता है कि मालिक की खूबसूरत लड़की जब पढ़ाई नहीं करती है तो वो कहता है कि तेरी शादी इस गधे से करा दूंगा, बस इसी उम्मीद में टिका हुआ हूँ। और मैसेज के साथ है रवि तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में जुड़े और अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन समय इशारा कर रहा है कि शो समाप्ति का समय होने का समय हो गया है। तो चलिए जिनकी भी फरमाइश आज बच चुकी है उन सभी वो सभी लोग मुझे माफ़ करेंगे और कल अपने समय से ही जुड़िएगा 12 से 4 के बीच माई चॉइस की जो योर वॉइस योर चॉइस का जो समय है उसी समय में। और अभी शो समाप्ति के बाद हेलो माई चॉइस का शो शुरू होने वाला है तो जिनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग हुई है वो कंटिन्यू रहेंगे और अपना हेलो माई चॉइस का कार्यक्रम सुनेंगे। और जाते जाते आज की जिनकी भी फरमाइशें छूट गई उन सभी के लिए ये आखिरी गाना हम छोड़ के जा रहे हैं। और जिनकी भी फरमाइशें नहीं आज प्ले हुई है वो लोग कल जुड़िएगा 12 से 4 के बीच में। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी गाने की फरमाइश जो है वो प्ले करें। फिलहाल मुझे दीजिए आज के इस शो से जाने की इजाज़त। रखिए अपना ख्याल अपनों का ख्याल और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM को। फिर मिलेंगे आप सभी से कल इसी शो में योर वॉइस योर चॉइस में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
10: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
12: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
11: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
12: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
15: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त RJ भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं। आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माय चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है

0: है तो क्या हो रहा है आजकल?
1: पढ़ाई कल क्या
0: अच्छा
1: होगा।
0: चलिए बढ़िया है। पढ़ाई चल रही है कि अभी छुट्टी है?
1: हाँ अभी छुट्टी है, समर
0: ओके तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: वेकेशन। भाई तू मेरी जान है,
0: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है? ओके
1: मेरी सिस्टर को और बताओ को और आपको।
0: तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेमेडी 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4।
1: नमस्ते मैम, गाना सुनना है?
0: जी गाना सुनाऊंगी, नाम बता दीजिए अपना।
1: सुना देखिए,
0: क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, आपको बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: पूरी गाना नहीं बजता
0: जी, भोजपुरी गाना सुनता है। बताइए
1: लाल का गाना कोई भी सुना दीजिए।
0: खेसारी लाल का गाना आप ही बता दीजिए, आपको कौन सा उनका गाना अच्छा लगता है?
1: भक्ति में कोई भी सुना दीजिए, भक्ति वाला।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ सुनाना है।
0: बता दीजिए किसे?
1: बेटी है उनको।
0: तो गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: रेडियो रमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्हीं ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
10: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: Now pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
11: Pick it up,
12: hello.
11: Now pick your phone up,
12: hello.
13: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
14: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
15: कैसे हैं?
16: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
15: हम भी अच्छे हैं। क्या हो रहा है? और मौसम गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बहुत काफी गर्मी,
16: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है।
15: डेली टेम्परेचर इतना ना हाई हो रहे हैं कि बाप रे बाप, घर में से निकला हुआ मुश्किल हो जाता है। और सब बताइए, सब अच्छा है ना?
16: जी और सब बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं?
15: सब अच्छे हैं जी, आप लोगों दुआ आशीर्वाद। बात करता हूँ। अच्छा बढ़िया है, गाना सुनना है दिल ने तुझे यार लिया, यही सुनना है।
16: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
15: जितना सुनने वाले हैं उन सभी को भी है। और आगे
16: जी जी एक बार अपना नाम बताते
15: हैं। जी विकास।
16: ओके तो फिर गाना प्ले करते हैं
15: जी,
16: सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।

0: हेलो, बहुत स्वागत है आपका रिवेंजन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: रितेश कुमार, अम्मा मॉडल।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: अम्मा मॉडल।
0: अच्छा, क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, आप बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है।
1: क्या है आप?
0: पढ़ाई कर रही हूँ।
1: कौन सी क्लास में है?
0: थ्री तारीख। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
1: अच्छी
0: चल रही है, बढ़िया है, मन लगा के पढ़िए। तो बता दीजिए, अभी कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: मूवी वाला गाना चल सकता है
0: जी? सारा मूवी का गाना चल सकता है। बताइए कौन सा मूवी का आपको सुनना है?
1: स्त्री मूवी का, आज की रात का।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: सबसे पहले आपको और मेरी माँ को और मेरी मम्मी को। पूरी रेडियो रंजन।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: थैंक यू मैम।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
2: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
4: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
2: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
4: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी गोपालगंज।
4: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
8: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु, ओकर का भइल?
9: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होइनु।
8: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के भी ना हुई और ऑपरेशन भी हो जाए।
10: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से, साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर MA अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने, रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053-69015 पे।
11: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़ दरगाह रोड, गोपालगंज।
12: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
13: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
10: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200-42-34-03, 6200-42-34-03।
14: Now pick it up, now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
17: नमस्ते मैडम जी।
18: नमस्ते,
17: क्या हो रहा है?
15: कुछ नहीं, बस और आपसे बात।
17: भारती जी बोल रही ना आप? आपका नहीं, मैं सोता हूँ, मतलब जिम का कार्यक्रम सुनते हैं हम तो रोज 5 बजे से 7 बजे तक।
15: जी
17: और क्या, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। आप कैसी हो?
15: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
17: हम तो बढ़िया है मैडम जी। अभी तो क्या है, बारिश हो रहा है तो उधर
15: बारिश हो रहा है।
17: हाँ बारिश हो रहा था श्यामगढ़ कल।
15: अच्छा जी, तो थोड़ा इधर भी भेजा कीजिए, इधर तो बहुत गर्म।
17: आप तो उधर भेजेंगे ना, बारिश आएगी आपके उधर भी आएगी, बिहार में भी बारिश।
15: देखिए अब इंतजार तो कर ही रहे लोग गर्मी, लेकिन इतना ज्यादा है कि क्या ही बताए आपको।
17: हाँ सही बोल रही आप मैडम जी, भेजेंगे आपके उधर भी भेजेंगे।
15: जी बिल्कुल भेजिए।
17: गाना सुनना है?
15: बता दीजिए कौन सा गाना।
17: गाना सुनना है मुझे, दिल का क्या कसूर।
15: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
17: डेडिकेट है ना ये वाला सॉन्ग।
15: बता दीजिए किसकी, किसको?
17: जेरे की गोमान सिंह धाकड़ है, चरण सिंह धाकड़ जी है, सुनील साहू जी है, मकसूद अंगड़ से, इनके लिए और आपके लिए डेडिकेट गाना ये वाला है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी नहीं करना, वादा तो टूट जाता। कुमार सानू और आशा भोसले जी का आवाज में ये वाला गाना।
15: जी जी
17: और क्या, ये वाला सुनना है।
15: ओके तो गाना प्ले करें?
17: प्ले कर दीजिए।
15: सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: क्या हो रहा है? मैं
1: कुछ नहीं, बस बात हो रहा है आपसे।
0: खाना हो गया है?
1: खाना हो गया। आपका हो गया?
0: अभी खा लिए।
1: सब तो बढ़िया है। और बताइए, और सब कैसा है? सब कोई कैसे है घर में?
0: सब ठीक है घर में।
1: तो बताइए, कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: गाना नहीं है तो अर्थी में कि चार्जर कत ही लगा ले ली।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: हाँ, आपको और सारे लिस्नर को।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे ए चाची, जब आँख से साफ नहीं खेलो को तो रोड पर लड़खड़ा के कहे चलतनी, और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहे नू, ओकर का भइल?
1: अरे ए बबुओ, परेशानी तो बा, लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लगेला। सुनले बानी की आँख में सुई लगेला, काफी दर्द होत होई नू।
0: अरे बाग चाची, तू कावना दुनिया में बारू? अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी, यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करतनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे, चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
12: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
11: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
12: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
11: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
15: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
14: कैसे हैं मैम?
15: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
14: बिल्कुल ठीक हूँ। गोपालगंज का मौसम का क्या मिजाज है?
15: गोपालगंज का मौसम तो बहुत ही गर्मी पड़ रहा है यहाँ
14: जी। इधर भी हमारे झारखंड में भी देवघर जिला में बहुत गर्मी है मैम, तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर तापमान है।
15: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है, आप देखिए क्या होता है, बारिश कब होता है।
14: हाँ, कल लगी जैसे बारिश होगी लेकिन यहाँ हम लोग खेत तक नहीं पहुँची।
15: मौसम तो बना रहा है कभी कभी बारिश के जैसा, फिर पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बताइए आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है?
14: मैम जानी दुश्मन फिल्म का गाना सुना दीजिए, पुराने जानी दुश्मन जो शत्रुघ्न सिन्हा का है।
15: कौन सा सॉन्ग?
14: ये किशोर कुमार, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने जो गाया है गीत के बोल बता रहा हूँ मैम। गीत के बोल है सुन भाई साधो बोल भाई माधो।
15: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
14: जी, सबसे पहले मैम आपको मैं सुनूंगा, रेडियो रिमिनी के जितने लिसनर है सब सबको सुनेंगे, और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं विष्णु प्रसाद यादव हैं, कृष्ण कोल हैं, मदन कोल हैं, राजकुमार हैं, जुगल कोल हैं, इमली कोल हैं, वो डेडिकेट करना चाहता हूँ।
15: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमिनी में। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
2: हमको तो पसंद है होंगे। बस धरती।
1: अच्छा, हाँ जी, ठीक। कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, आप बताइए।
1: हम भी ठीक हैं। क्या हो रहा है अभी?
2: अभी बैठे है, बहुत ज्यादा धूप है।
1: धूप तो बहुत ही तेज है आज, तो गर्मी और ज्यादा लग रहा है।
2: बहुत ज्यादा, वही घर में काम लगा हुआ है तो सोच रहे थे कुछ करे, तब तक इतना गर्मी है कि बैठे खाना बैठ के।
1: बताइए, आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: आज गाना सुनना है नीलकमल सिंह का सैड संग। कोई भी
1: नीलकमल जी का कोई भी सैड
2: संग? कोई भी सैड संग हो,
1: आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है।
2: काजल राघवानी से आपने जो डांस किया है ना, वो वाला।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
2: डेडिकेट तो अपना ये लीजिए ना, मेरे सामने जी से बोले बोले बोले। हाँ नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: सब ठीक है, अपना सुनाइए।
1: ठीक है,
2: ना हो गया
1: जी? हाँ मेरा हो गया, आपका हो गया?
2: चलिए ठीक है, समझे।
1: ठीक है, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनकर सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
5: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
6: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क 99393965930।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
4: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
4: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
4: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: Now pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
13: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein.
12: Hello.
13: आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
14: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है कि इतने देर बाद आप मिली है। ये रेडियो बहुत मुश्किल हो गया है रंजन।
11: क्यों?
14: इसलिए मुश्किल हो गया है कि बहुत देर से लगाना पड़ता है।
11: अच्छा
14: बहुत महंगा हो गया है रेडियो रंजन।
11: जी कॉल तो आ ही रहे हैं।
14: हाँ कॉल तो आ ही रहे
11: हैं। कैसे हैं आप?
14: हाँ जी बहुत मैं अच्छा हूँ और शुक्रिया है कि आपसे मिल गई, नहीं तो अब छोड़ देने वाला था मैं।
11: अच्छा कि हमने कॉल उठा लिया आपका।
14: उठा लिया नहीं तो बस एक ही मतलब शुक्रवार को करते हैं।
11: अच्छा जी और सब बढ़िया है?
14: और यहाँ की गर्मी बहुत पड़ रहा है।
11: जी गर्मी तो बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है।
14: गोपालगंज में पानी नहीं है, हालत खराब हो गया, रात को भी नींद नहीं आता है।
11: जी
14: तो अभी इसी नींद के हालत में जो है गाना कैसे छोड़ दिया जाए सुनना।
11: जी गाने से थोड़ा राहत मिलता है।
14: हाँ गाना से राहत मिलता है कि रेडियो लेकर बैठो और सुनते रहो, पसीना निकालते रहो।
11: गर्मी है तो क्या कीजिएगा।
14: अरे बाबा इतना गर्मी कभी नहीं पड़ा था, हमको लगता है यही। बहुत प्यार मैडम, वो गाना सुनना है,
11: बता दीजिए।
14: दम है तो मुझको थाम ले ऐसा कोई कविता कृष्ण मूर्ति का गाया हुआ था कि उसका दम है तो आना मुझको थाम ले। ऐसा ही है तो वो भी कहीं मैं सुन रहा था तो सोचा कि आज ये भी फरमाइश करूंगा गाना।
11: ओके
14: और सब सुनाइए कैसा है आपका भी?
11: और सब बढ़िया है, गाना प्ले करते हैं।
14: ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैडम,
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
1: अच्छा है।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी फोन लगा रहे आपके पास।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है राम तेरी गंगा मैली।
0: और गाना इसका कौन सा?
1: गाना सुनता है बस सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे सुन लिया।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
1: आपको? जितने रेडियो रेंजी मार्जिन सब है, सब श्रोता दोस्त है सबके साथ।
0: ओके, तो गाना प्ले करें?
1: जी मैडम जी।
0: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रेंजी 90.4 FM।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री।

0: याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
0: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
7: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94453
5: और 9097-6160-02।
8: अरे स्टीयरिंग हिल क्यों रहा है और ये टायर जल्दी घिस क्यों रहे हैं?
4: अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा तो समझ जाइए, टायर को चाहिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग।
3: और इसके लिए जिले में भरोसे का एक ही नाम है, मिश्रा टायर्स, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग।
4: यहाँ होता है कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, 3D अलाइनमेंट, डिजिटल बैलेंसिंग, सब कुछ आधुनिक मशीनों से।
3: साथ ही सभी कंपनी के टायर ट्यूब बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध हैं।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें। विजिट करें मिश्रा टायर्स कंप्यूटराइज्ड अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, शिव मंदिर पोखरा के सामने, NH 27 बंजारी, गोपालगंज।
3: रोड सपोर्ट या जानकारी के लिए कॉल करें 8825214946।
9: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
11: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
12: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो, हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
15: नमस्ते मैडम जी।
14: नमस्ते,
15: कौन भारती जी बोल रही है कि सोनी जी बोल रही है?
14: पहचानिए,
15: मेरे को तो भारती जैसी आवाज लग रही है।
14: हाँ जी
15: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू बोल रहा हूँ मधुसूदन गढ़ से।
14: हाँ हाँ, कैसे हैं आप?
15: बढ़िया है बहन जी, शादी में आए, इंदौर आए, शादी है रिश्तेदारों में, तो इंदौर से कॉल हो रही है, आपसे इंदौर से बात चल रही है।
14: जी तो अभी क्या हो रहा है?
15: अभी कुछ नहीं दीदी, अभी तो खाना माना तैयारी चल रही, खाना खाएंगे।
14: जी जी,
15: आपने खा लिया क्या?
14: जी हमने खा लिया।
15: अच्छा, और दीदी आज मेरी फरमाइश आएगी,
14: बता दीजिए।
15: साजन फिल्म की।
14: और कौन सा सॉन्ग?
15: ये सॉन्ग है ना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये गाना मैडम जी मेरी पत्नी को डेडिकेट है सबसे पहले तो, और आपको भी है। और हमारे दोस्त हैं मांगीलाल धाकड़ है, राम नरेश प्रजापति है, और गोपाल ओझा है, ये सभी को ये गाना डेडिकेट है, जितना भी ये फरमाइश सुन रहे हैं उनको।
14: जी बिल्कुल, तो गाना प्ले
15: जी जी धन्यवाद,
14: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।
15: धन्यवाद।

0: हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
0: गाना गाना सुनवा दीजिए।
1: जी गाना सुनाऊंगी, नाम बता दीजिए अपना।
0: नाम संतोष महतो।
1: और कहाँ से हैं आप?
0: बैकुंठपुर, दिघवा दिघावली बैकुंठपुर से।
1: तो बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
0: गाना सुनवा दीजिए फूल और कांटे का।
1: गाने का नाम?
0: कौन सा सुनवा दीजिए?
1: कांटे का कोई भी सॉन्ग।
0: हाँ जी।
1: ओके, सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ जी,
1: बता दीजिए।
0: सबसे पहले आपको पूरा जुड़ा जितना लोग है, अभी बच्चा, सब लोग को सुनवाना है।
1: ओके, तो कैसे हैं आप अब?
0: अभी तो हम लोग पंजाब में हैं।
1: ओके, तो हाल चाल बढ़िया है?
0: हाँ जी बढ़िया है।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: सुनते रहे रेडियो प्रेम जी 90.4 एफएम।
0: ठीक है।

0: मेरे दर्द के मारे जान ही निकल रही है। कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्रामिक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
10: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
9: तो देर मत कीजिए,
10: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
13: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
14: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
13: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
15: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो, नमस्कार।
18: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
17: जी विशाल मास्टर बोल रहे हैं धना से।
18: जी जी,
17: बहुत बिजी जा रही है अभी तक। 6:30 बजे तक रिकॉर्डिंग होगा क्या आज? तो बहुत सब बताइए, क्या समाचार है?
18: मेरा बढ़िया है, आप अपना बताइए।
17: अरे हम लोग का तो देख ही रहे, मशीन चल रहा है, आपका कार्यक्रम चल रहा है, 9 बजे चलता है दिन भर।
18: जी, तो मौसम कैसा है अभी?
17: और कहिए मत, इतना धूप है ना कि जल जाइएगा। हाँ, उधर से पानी वानी भेजिए, बल्कि आपके तरफ पानी ज्यादा पड़ता है, बरखा ज्यादा होता है उधर।
18: अभी तो हम लोग के यहाँ भी धूप हुआ है, देखिए कब बारिश होता है।
17: ना उधर बहुत बारिश होता है, हम लोग के तरफ भी। हम लोग इधर दक्षिण बिहार रोहतास जिला में है ना, हम लोग के तरफ कम होता है, उधर ज्यादा होता है।
18: बहुत गर्मी होता है, हम भी गए हुए उधर, बहुत गर्मी होता है।
17: तो गाना सुनवा दीजिएगा, सनम बेवफा मूवी।
18: कौन सा सॉन्ग?
17: बे इरादा नजर मिल गई तो, बे इरादा नजर मिल गई तो, हाय मुझसे ये वाला है ना? वही वाला है। और सबसे पहले सुनवाएंगे आपको, और हम लोग
18: 90.4
17: जी। नमस्कार
18: नमस्कार।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम बिल्कुल मस्त हैं, बिंदास हैं।
0: जी, ऐसे ही होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है?
1: अभी तो हमारे घर देना होना मतलब हाँ पंखा चल रहा है, गर्मी की छुट्टी मिला है ना।
0: तो भोजन हो गया आपका?
1: जी भोजन हो गया, अब बनेगा खाना दोपहर।
0: अच्छा जी,
1: मैम आपकी तरफ मौसम कैसा हुआ है?
0: मौसम तो बहुत गर्मी पड़ रहा है
1: जी, इधर भी वो पता ना टेम्परेचर कितना यार, 40 डिग्री है कि कितना डिग्री है, बहुत गर्मी। सुबह और शाम बुझाई नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है।
0: गर्मी बढ़
1: जी
0: गया है थोड़ा।
1: जी, गर्मी बढ़ गया। सब गाना सुनना है,
0: बता दीजिए कौन सा सॉन्ग।
1: दारू कैसे मचा गया ना हो, ये गाना। वही सुना दीजिए गाना। सबसे पहले तो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
0: ओके
1: सभी लिसनर को।
0: ओके, तो गाना प्ले करें?
1: जी प्ले कर दीजिएगा।
0: तो फिर गाना प्ले करते हैं।
1: जी प्ले कर दीजिएगा।
0: सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: प्रसाद क्लिनिक,
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 1,10,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
11: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
12: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
16: Break ke baad aap sabhi ka ek baar fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994। जी हाँ, 80029994। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: जी बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस।
18: जी नमस्ते मैडम।
17: नमस्ते,
18: क्या हाल चाल है?
17: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
18: बस बढ़िया, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। आज
17: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है।
18: विकास कुमार बोल रहा हूँ, चिंता।
17: और सब
18: गर्मी बहुत है।
17: गर्मी तो बहुत काफी है आज।
18: अभी थोड़ी देर पहले गोपालगंज हम गए थे, बहुत ज्यादा गर्मी,
17: धूप भी वैसे ही निकला हुआ है।
18: एक हाथ में मेरी लेडी से बैठी हुई थी, वो पैसा निकालने के लिए गई था, तो उसको बोले कि चलो जल्दी चलो, धूप पड़ रहा है बहुत ज्यादा।
17: चलिए ठीक है, धूप में घर में रहिए, धूप ज्यादा है।
18: और बताइए, खाना उना खा लिया मैडम?
17: जी मेरा हो गया, आपका हो गया?
18: 9 बजे हम लोग खा लेते हैं।
17: तब तो अच्छा है।
18: आज गाना सुनवाइएगा हमको, सॉन्ग सुनवाइएगा क्रांति फिल्म का।
17: कौन सा सॉन्ग?
18: तो क्रांति फिल्म का एक सॉन्ग नहीं है, झूठ बोले कौए काटे काली कौए से, ये वाली सुनवाइएगा, मोह गाना है एकदम।
17: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
18: सबसे पहले आपको, जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सब, उसका ये गाना अपने लड़की के लिए, अपने भाई के लिए, बस एक मेरा दादाजी है।
17: तो फिर गाना प्ले करते हैं,
18: ठीक है,
17: सुनते रहे सबके साथ।
18: और सब बढ़िया है ना?
17: जी जी बिल्कुल, मेरा बढ़िया है।
18: चलिए, कल भारती जी का चल रहा था ना,
17: सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हाँ हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैं नौशाद मोबाइल विक्रमगंज दोहरा शहर।
1: क्या हाल है आपका?
0: बहुत बढ़िया है, अपना बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: गर्मी हो रहा है उधर?
1: जी जी गर्मी तो बहुत ही है।
0: तो आज विक्रमगंज में और कारागार में और ये रोशन टेलर धनाव के जो है ना एसाद मास्टर गाना सुनवाना चाहते हैं। किस तुम का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिएगा। बहुत दिन के बाद आपके पास कॉल लगा, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कॉल लगेगा, कब लगेगा, कब तक बज जाएगा गाना?
1: गाना 2 दिन के बाद बजेगा आपका।
0: 2 दिन के बाद बजेगा? अच्छा ठीक है मैम,
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: यह शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
9: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
8: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
10: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अरे ए चाची जवान।

0: से साफ नहीं खेलो गौत तो रोडवा पर लड़खड़ा के कहे चल तनी और तहार मोतियाबिंद का ऑपरेशन होके वाला रहनु ओकर का भइल।
1: अरे ए बबुओ परेशानी तो बा लेकिन ऑपरेशन से हमके बहुते डर लागेला। सुनले बानी की आँख में सुई लागेला, काफी दर्द होत होइनु।
0: अरे बाग चाची तू कावना दुनिया में बारू। अब अपना गोपालगंज में चेन्नई के डॉक्टर एस हैदर जी आगल बनी। यहाँ के आँख में बिना सुई लगौले, बिना चीड़ फाड़ कैले और बिना टाका लगौले फेको मशीन के द्वारा आँख के ऑपरेशन करो तनी। तो तू इनके लगे काहे न कुचल जा, आँख में कोनो तरह के दर्द भी ना होई और ऑपरेशन भी हो जाए।
2: आंखों से जुड़ी बीमारियों के सफल इलाज के लिए आज ही मिले सिवान के सुपर सिद्ध डॉक्टर इसराइल की सुपुत्री डॉक्टर एस हैदर से। साथ ही हर शुक्रवार को मिले ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट डॉक्टर एम ए अकबर जी से। ध्यान रहे चेन्नई आई केयर अब चला गया है कमला राय कॉलेज रोड यमहा शोरूम के सामने रालसन होटल के पश्चिम गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99053 69015 पे।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: एपिसोड 29 29

पार्वती की हस्त रेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
1: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
0: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
1: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
0: तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
1: और अब सिवान जिले में भी हमारी 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
1: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी BK टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
1: कुचाई कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
8: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज। और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
9: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
10: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
11: एपिसोड 30, 30।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
4: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पटना से दिल्ली का सफर 4 घंटे 41 मिनट में होगा पूरा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, स्टार्टअप और उद्योगों के विकास के लिए बिहार टेक पोर्टल का होगा निर्माण। अगले 5 साल में देश का औद्योगिक हब बनेगा बिहार। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में 10 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की दी स्वीकृति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार की पॉलिसी और फैसलों ने पूरे देश में लगातार नए रोजगार के मौके बनाए हैं। श्री मोदी नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से देश विकास पथ पर तेजी से अग्रसर है।
1: साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर जाता है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत रोजगार योजना की मदद से अब तक करीब 70 लाख नौकरियां सृजित हुई हैं।
1: हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज छपरा से आनंद विहार के लिए नई साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे बिहार सहित पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में बिहार को बुलेट ट्रेन परियोजना का भी लाभ मिलेगा।
2: बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी। आज साथियों, जो दिल्ली की ये गाड़ी रवाना हो रही है, ये बहुत लंबे समय से मांग थी। इससे छपरा से बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, ये सारे के सारे एक सूत्र में बन जाएंगे और आने वाले समय में पूरे छपरा के निवासियों को बहुत बड़ी एक सुविधा रहेगी।
0: इधर केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री ने जिले के मढ़ौड़ा स्थित लोकोमोटिव प्लांट में तैयार 51वें रेल इंजन को संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना किया। मढ़ौड़ा से रवाना किया गया यह इंजन पहले मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा, वहां से समुद्री मार्ग के जरिए इसे गिनी भेजा जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत बना यह इंजन भारी माल ढुलाई के लिए डिजाइन किया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना से बिहार को लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया, नवाचार, तकनीक और उद्यमिता के माध्यम से नए भारत की मजबूत नींव रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाकर बिहार विकसित राज्य के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में स्टार्टअप और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही बिहार टेक पोर्टल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को अगले 5 वर्षों में उद्योगों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। पटना के राजीव नगर स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योग स्थापना में आने वाली बाधाओं को तेजी से दूर कर रही है तथा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सहयोग पोर्टल और सहयोग शिविरों के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान की प्रभावी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में नगर विकास और आवास विभाग की 157 योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नगर विकास और आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा भी उपस्थित रहे। पटना स्मार्ट सिटी के कुल 9 प्रोजेक्ट्स को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। पटना के चर्चित परियोजनाओं में मीठापुर में 26,000 वर्ग फुट क्षेत्र में तैयार कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा पटना में गिग वर्कर्स के लिए 2 एसी लाउंज का भी उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री ने दीघा से सभ्यता द्वार तक विकसित रिवर फ्रंट परियोजना का भी उद्घाटन किया। यह जिगजैग पार्क बनाया गया है। नगर विकास विभाग की यह परियोजनाएं पटना शहर को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पटना में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में 10 अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं विभागीय कार्रवाई को स्वीकृति दी है। श्री जायसवाल ने कहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। पटना सिटी की भूमि सुधार उप समाहर्ता अभिलाषा सिन्हा पर दाखिल खारिज अपील वाद के निष्पादन के बदले 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर निलंबन की अनुशंसा की गई है। वहीं हाजीपुर के तत्कालीन अंचलाधिकारी मुकुल कुमार झा, किशनगंज सदर के अंचलाधिकारी राहुल कुमार तथा पश्चिम चंपारण के बगहा एक की अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव सहित कई अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। तिरहुत क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक ने कार्य में लापरवाही के आरोप में शिवहर जिले के तरियानी थानाध्यक्ष विनय कुमार को निलंबित कर दिया है। इधर सुपौल के पुलिस अधीक्षक ने प्रतापगंज थाना के मालखाना से प्रतिबंधित कप सिरप को अवैध रूप से बेचने के आरोप में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं चौकीदार राहुल कुमार सहित 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने लगभग एक दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी MVR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग दोगुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क भी महंगे होंगे। नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष MVR में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्टर पर मिलने वाली छूट बढ़ाकर 0.5% कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। दरभंगा में 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए विशेष बस सेवा चलाई जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिल्ली मोड़ बस पड़ाव और दरभंगा रेलवे स्टेशन से विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक 10 बसों का परिचालन किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बसें सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक निर्धारित मार्गों पर चलेंगी, जिससे परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा होगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना के बामेती सभागार में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम उत्पादक किसान, उद्योग विशेषज्ञ और आम विक्रेता मौजूद रहे। महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां किसानों और आम प्रेमियों को अलग अलग किस्मों के आमों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि बिहार में आम की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मॉनसून के प्रसार की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित जिलों के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है।
1: राज्य के पूर्वी भाग 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर उष्ण लहर होने चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने बांका, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, सहरसा और समस्तीपुर सहित अन्य जिलों में अगले 2 घंटों के दौरान तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड स्थित राजकीय एकीकृत मध्य विद्यालय डहरक ने स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर 64वां स्थान प्राप्त किया है। देश भर के लगभग 14,75,000 विद्यालयों का मूल्यांकन किया गया था, जिनमें से 191 विद्यालयों का चयन राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बिहार में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पटना से दिल्ली का सफर 4 घंटे 41 मिनट में होगा पूरा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, स्टार्टअप्स और उद्योगों के विकास के लिए बिहार टेक पोर्टल का होगा निर्माण, अगले 5 साल में देश का औद्योगिक हब बनेगा बिहार। और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मामलों में 10 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की दी स्वीकृति। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: राज्य सरकार ने लगभग एक दशक बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम मूल्यांकन पंजी MBR यानी सर्किल रेट बढ़ा दिया है। निबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर औसतन 1.6 गुना जबकि शहरी क्षेत्रों में लगभग दोगुनी कर दी गई है। सर्किल रेट बढ़ने से जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प शुल्क भी महंगे होंगे। नई व्यवस्था के तहत अब हर वर्ष MBR में स्वतः 5% की वृद्धि होगी और प्रत्येक 3 साल पर इसकी समीक्षा की जाएगी। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि सर्किल रेट बढ़ने से भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि महिलाओं के नाम संपत्ति
1: ये आकाशवाणी का पटना।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
3: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
4: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
5: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रमझिम,
5: सुनो दिल से।
7: पूछे जो कोई

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: लल्ला मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क 99-393-65-930।
3: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
4: क्यों, क्या हुआ है?
3: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
4: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
3: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
5: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
6: तू जो है, आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
1: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्था

0: व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासामूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
3: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
2: तो देर मत कीजिए,
3: सेंट जॉन स्कूल सासामूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
4: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अफसर अली। और साथियों, सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली के सहयोग से रेडियो रिमझिम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आज सच कहूं तो आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी मैं स्टूडियो में बैठा हूं और यहां एसी भी चल रहा है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा है। दोस्तों, सुबह जब मैं घर से निकला तो लगा कि आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा लगा कि आज तो हालत खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ 10 बजे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर सिर पे खड़ा है। क्या साथियों, आपको भी ऐसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। श्रोताओं, मुझे याद है पहले गर्म सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब तो ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आसपास।
5: अरे आरजी बाबू, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी है तो पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वाकई कुछ ज्यादा ही तेज है, और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
4: ठीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ और बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात मुझे अब भी समझ में नहीं आ रही है कि क्या ये सब मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की इसमें कोई भूमिका भी है। सच बताऊं तो अब ये गर्मी मुझे डराने लगी है, ये पहले जैसी नहीं रही।
5: देखिए आरजी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वो हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होता ये है कि जो गर्म हवा है वो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल भी नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं। जमीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती, और फिर वो गर्मी को और तेजी से पकड़ती है, जैसे तवा गर्म होता जाता है।
4: ओह, तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है, बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहे हैं।
5: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
4: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है। ओह, और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
5: हाँ आरजे, यही सच्चाई है। और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है।
4: अच्छा भाभी, अब मुझे ये बताइए कि ये लू क्या होता है? हमने अक्सर सुना है लोग कहते हैं कि लू लग गई, उसको लू लग गई, इसको लू लग गई, लेकिन असल में ये शरीर के अंदर होता क्या है?
5: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
4: मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
5: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल सकती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
4: तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि हम सबके लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
5: देखिए आशे, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिए, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
4: अच्छा दीदी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की तो बात की, लेकिन कई बार हमने सुना है कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। ये ORS क्या होता है और इसको कब लेना चाहिए?
5: बहुत अच्छा सवाल है आरजे। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
4: मतलब ये कि ये सिर्फ बीमारी में ही नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है।
5: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर, ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
4: वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है।
5: बिल्कुल आरजे, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों है जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
4: हाँ ये तो सही बात है, अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। लेकिन दीदी, क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
5: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं और जब भी निकले तो सिर को ढक कर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता, हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
4: ये तो ठीक है, लेकिन खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है।
5: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की भी कमी नहीं होने देते।
4: अच्छा भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे हमारे मजदूर भाई, किसान भाई, रिक्शा चलाने वाले लोग, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होगा। उनका क्या?
5: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वो अपने काम का समय थोड़ा बदलें। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहाँ भी छांव मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
4: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
5: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
4: और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या करें।
5: ऐसे स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और भी अच्छा। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
4: अच्छा भाभी, एक और बात बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे प्रभावित होते हैं?
5: अरे आरजे, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
4: तो भाभी, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना वो भी झेलते हैं जितना हम।
5: बिल्कुल आचे, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दें तो वो किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवन दान बन सकता है। ये छोटा सा काम है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है और यही असली इंसानियत है।
4: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत जरूरी बात समझाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो मैं बताना चाहूँगा, हमें बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने हैं, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई बच्चा हो या फिर कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर हो, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत है। साथियों, याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी तभी रहेगी सेहत पूरी। भाभी, आपकी बातें सुनकर मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने कोई ऐसा मसला देखा है जहां लापरवाही भारी पड़ गई हो?
5: हाँ आरजी, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव में पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। धूप तेज थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी दे देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
4: ये तो बहुत दुखद है भाभी।
5: हाँ आरजे, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था अगर समय पर पानी दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
4: साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसलिए आज से ही ये तय कर लीजिए अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
5: और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाएं, तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
4: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। और जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान देंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्मार्ट संस्था द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और साथियों, अब वो समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो हम फिर मिलेंगे आप सभी से इसी शो सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और याद रखिए, पानी पीते रहिए, छांव में रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल कहता है सुनो दिल से।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97076575।
14: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
15: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
14: अरे, अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
15: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
16: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
17: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय श्री विजयपुरम, कार्यपालक अभियंता सिविल के पद के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पद आरंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट andamannicobar.gov.in या apwd.and www.nic.in। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव पद के लिए एक सदस्य की रिक्ति भरे जाने हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निहित पात्रता शर्तें और अन्य विवरण आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर dopt.gov.in। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रहेगी 21 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। महाप्रबंधक AHL, प्रबंधक विधि, फार्मासिस्ट दवा खरीद, इन सभी पदों के लिए आयु सीमा रहेगी 45 वर्ष। सभी पदों के लिए एक एक रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा आपूर्ति निगम लिमिटेड की वेबसाइट अथवा www.upmsc.in। मुंबई पत्तन प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। मरीन इंजीनियर पायलट अनुबंध पर तथा योजना एक अथवा दो के तहत पायलट अनुबंध के आधार पर। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ TGT संस्कृत के एक पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र, योग्यता, नियम और शर्तों के लिए देखिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट sschittorgarh.edu.in। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय कैंपस निदेशक के दो पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट www.imu.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
5: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
18: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
19: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
18: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
19: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
18: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
19: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या। दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
20: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
18: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
21: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
22: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
23: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
24: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
23: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचायको,
24: रोड, तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
23: और अब सिवान जिले में भी हमारी दो शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
24: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
23: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
24: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
23: कुचाय कोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
24: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899227567 या 97714861.
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
6: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
7: क्यों, क्या हुआ है?
6: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
7: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
6: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
7: शादी विवाह।
8: करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
9: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
8: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
9: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
8: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
9: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
8: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
10: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
8: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: As our foreign policy,
4: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
3: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची, वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग ढाई घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सरोखपुर का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के आठों राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
9: दिस इज द कंट्री, यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
13: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
14: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
15: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
16: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
15: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
16: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
15: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
16: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
15: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
16: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
17: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
18: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
15: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
16: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
15: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
15: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
16: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
15: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
16: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
19: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
20: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
19: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
20: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
21: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
22: क्यों, क्या हुआ है?
21: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
22: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
21: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
22: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
23: ठक ठक।
21: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा मिला ही नहीं।
21: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
22: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
21: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
22: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
24: न
0: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पिकअप चालक को गोली मारकर अपराधियों ने 1,00,000 रुपए की लूट। बारात में नर्तकी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। पेड़ से लटकता मिला एक युवक का शव। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर की गई समीक्षा बैठक। और गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा का हुआ स्थानांतरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। सबसे पहले गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के स्थानांतरण की खबर आई। बताया जा रहा है कि गृह विभाग ने जिला पदाधिकारी को यहां से ट्रांसफर कर दिया और इनके जगह अब गोपालगंज के नए जिलाधिकारी समीर सौरभ को बनाया गया है। जल्द ही समीर सौरभ गोपालगंज की कमान संभालेंगे और जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा समीर सौरभ को गोपालगंज का चार्ज देने के बाद यहां से अपने अगले पदस्थापन वाले स्थान पर रवाना होंगे। विजयपुर थाना क्षेत्र के महेशपुर मोड़ के पास एक पिकअप चालक को अज्ञात आधा दर्जन अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि घायल पिकअप चालक की गाड़ी से अपराधियों ने 1,00,000 रुपए लूट लिए। घायल पिकअप चालक की पहचान उत्तर प्रदेश देवरिया के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के कांधे छापर गाँव निवासी 25 वर्षीय सैनुल्लाह शेख पिता कमरुद्दीन शेख बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर घायल सैनुल्लाह शेख ने बताया कि वह देवरिया से पिकअप वाहन लेकर बैकुंठपुर विजयपुर होते हुए सिवान जा रहा था। उसके पास आम खरीदने के लिए 1,00,000 रुपए नगद थे। महेशपुर गांव के पास जैसे ही वह सड़क के पास ब्रेकर के नजदीक पहुंचा तो सामने से आ रही एक चरपहिया गाड़ी ने उसे रोकने का इशारा किया। संदिग्ध गतिविधि देखकर चालक को शक हुआ और उसने वाहन मोड़कर वापस जाने का प्रयास किया, तभी उसकी गाड़ी गड्ढे में फंस गई। इसी बीच चरपहिया वाहन में सवार लगभग आधा दर्जन अपराधियों ने बिना कुछ पूछे चालक पर गोली चला दी। गोली उसके गर्दन के पिछले हिस्से में लगी जिससे वह स्टीयरिंग पर ही गिर पड़ा। इसके बाद अपराधी मृत समझकर घायल चालक को वहीं छोड़ दिए और उसकी गाड़ी में रखा 1,00,000 रुपए लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद वह किसी तरह वाहन से बाहर निकला और पास स्थित काली मंदिर के पास पहुंच गया। वहां स्थानीय लोगों की नजर जब उस पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई और गंभीर स्थिति में लोगों की मदद से इसे सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां इसका इलाज चल रहा है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को खंगाल रही है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की बात कह रही है। कटिया थाना क्षेत्र के जमुना

मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इसमें तीन लोगों की पहचान भी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। बरौली थाना क्षेत्र के नवादा गांव में पेड़ से लटकता हुआ एक युवक का शव जैसे ही सुबह लोगों ने देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में ले लिया। मृतक सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बसाव रफी गांव का रहने वाला अमानुल्लाह का पुत्र शोहरत अली उम्र 22 वर्ष बताया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि शोहरत अली बचपन से ही अपने मामा के घर नवादा में ही रहता था। परिजनों के अनुसार शोहरत करीब 15 दिन पहले ही विदेश से अपने घर लौटा था और विदेश की कमाई की रकम से वह भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने मामा के घर के पास ही जमीन खरीदना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने एक व्यक्ति के जमीन का सौदा किया और अग्रिम राशि के तौर पर 7 लाख रुपए भी दिए। आरोप है कि रकम लेने के बाद संबंधित व्यक्ति लगातार जमीन की रजिस्ट्री टाल रहा था। जब शोहरत ने रजिस्ट्री कराने या अपनी राशि वापस करने का दबाव बनाया तो उसे न तो जमीन मिली और न ही उसके पैसे लौटाए गए। परिजनों का कहना है कि इसी से आहत होकर वह काफी परेशान चल रहा था। हालांकि पुलिस युवक के मौत के कारणों को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी पहलुओं की जांच होगी। परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को भी गंभीरता से लिया गया है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। समाहरणालय के सभा कक्ष में जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यों की समीक्षा हुई। इस दौरान स्वच्छ मिशन 2.0 के सफल क्रियान्वयन और विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने जिले के सभी नगर निकायों में स्वच्छता से संबंधित योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित योजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि का चयन जल्द से जल्द किया जाएगा। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में कटिया थाना क्षेत्र के चिंटू कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस पर प्राथमिकी दर्ज था और यह फरार चल रहा था, तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर उत्पाद विभाग की कोर्ट में पेशी के लिए दो अपराधियों को पुलिस लेकर जा रही थी। इसी बीच बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भागने लगे। इसमें एक अपराधी ने हथकड़ी सरकाकर मोनिया चौक के तरफ भागने का रास्ता चुना। बताया जा रहा है कि उधर भीड़ भाड़ होने की वजह से वह अपराधी भागने में सफल भी हो गया। दूसरा अपराधी पोस्ट ऑफिस मोड़ की तरफ भाग रहा था, जिसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंपा। पुलिस की इस चूक से अपराधियों को कोर्ट में लाने वाले पुलिस कर्मियों पर फटकार भी लगी है। बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा नोनिया टोली गांव के पास छठ घाट पर पुलिस ने राजा कुमार पांडे और विश्वजीत कुंवर को 90-90 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों के पास मोटरसाइकिल भी थी, उसे भी जब्त किया गया था और दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेशी के लिए गोपालगंज लाया था। इसी बीच दोनों आरोपी भागने का प्रयास करने लगे, जिनमें एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। पकड़ा गया आरोपी राजा कुमार पांडे है और विश्वजीत कुंवर अपनी हथकड़ी सरका कर फरार हो गया है। पुलिस अब दोबारा इसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। माझा थाना की पुलिस ने एक चोरी के कांड का उद्भेदन किया है और चोरी के सामान के साथ तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि चोरी कांड में नामजद अभियुक्त विकास कुमार पिता नागेंद्र शाह, लालू शर्मा पिता परमानंद शर्मा एवं हिमांशु पासवान पिता सुरेंद्र माझी, ये सभी श्रीरामपुर थाना माझा के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से चोरी का मोटर और कई सामान पुलिस ने बरामद भी किया है। पिछले 17 जून को कटिया थाना क्षेत्र के डेरवा झरही नदी में नहाने के दौरान एक बच्चा लापता हो गया था। घटना के बाद से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। आज पुलिस ने इस बच्चे के पार्थिव शरीर को नदी से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल से 20 किलोमीटर दूर फुलोरिया के अमुआ घाट के पास से शव को पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि 17 जून को नहाने के दौरान यह बच्चा गायब हो गया था। यह बच्चा इसी गांव के मिथिलेश यादव का 7 वर्षीय पुत्र अंगद यादव था। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और परिजन घटना के बाद से ही शोक में डूबे हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा खेत बचाओ अभियान, स्वच्छ मिट्टी सुरक्षित फसल और समृद्ध किसान विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी पुलिस ने कई जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों को जागरूक किया गया। आज के इस कार्यक्रम में कुल 47 किसानों ने भाग लिया, जिसमें 32 पुरुष और 15 महिला किसान

0: का नाम शामिल है।
1: और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पिकअप चालक को गोली मारकर अपराधियों ने 1,00,000 रुपए की लूट। बारात में नर्तकी की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। पेड़ से लटकता मिला एक युवक का शव। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर की गई समीक्षा बैठक। और गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा का हुआ स्थानांतरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034-48652 पे।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: सुनिए सुनिए सुनिए,
11: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
10: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
11: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
10: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
12: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
13: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
12: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
14: प्रसाद क्लिनिक।
15: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
14: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
15: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
16: घर बन रहा हो तो सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, टाइल्स और फिटिंग्स का चुनाव भी होना चाहिए शानदार।
17: इसीलिए गोपालगंज जिले के लोगों की पहली पसंद बन चुका है BK टाइल्स। BK टाइल्स, यहाँ मिलेंगे सभी प्रकार के डिजाइनर टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, बेसिन, कॉमोड, बाथ फिटिंग्स और घर सजाने के कई आधुनिक प्रोडक्ट,
8: वो भी किफायती दामों पर। और खास बात, गोपालगंज जिले में हमारी 4 सुविधाजनक शाखाएं,
17: RR मोड SP कोठी के पास गोपालगंज, दूसरा ब्रांच भटवा मोड के पास कुचाई कोट,
0: रोड, तीसरा ब्रांच इस्लामिया कॉलेज के पास मेन रोड थावे मीरगंज, और चौथा ब्रांच बंतरिया मोड़ भोरे।
17: और अब सिवान जिले में भी हमारी दो शाखाएं उपलब्ध हैं, सिवान ब्रांच कुशवाहा चौक हकाम बाईपास सिवान,
0: और मैरवा ब्रांच बबनौली चौक मैरवा सिवान।
17: तो आज ही अपने सबसे नजदीकी बीके टाइल्स ब्रांच पर आए और करे बेहतरीन खरीदारी।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गोपालगंज ब्रांच में 8460571406, मीरगंज ब्रांच में 9693101611,
17: कुचायकोट ब्रांच में 9693101602, भोरे ब्रांच में 8207856404,
0: सिवान ब्रांच में 9942071405, मैरवा ब्रांच में 8207856403।
18: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
17: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
19: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
17: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
19: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
17: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अम्बेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
19: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
17: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
20: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ 90.4 FM पे। समय 9:21 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो आप पुराने गाने की फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके।

और आप सभी का कुछ मैसेज पहुंचा हुआ है, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे। और यहाँ पे कई श्रोतागण हैं जो फ़ोन कर रहे हैं, तो फ़ोन नहीं करना है, आप सभी को कॉल करते हैं तो आपकी फरमाइश बिल्कुल ही पूरा नहीं की जाएगी। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं उस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे कुछ मैसेज आप लोगों का पहुंचा हुआ है उसको शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पहला मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हाय सर जी, नमस्कार सर जी, मैं प्रीति रैदास, विलेज लकड़ी, दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार से, और आज मेरे मम्मी पापा का मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज मुझे एनिवर्सरी सॉन्ग सुना दीजिए। सॉन्ग नेम है ये तो सच है कि भगवान है, फ्रॉम द मूवी हम साथ साथ हैं, ये अपने पसंद से कोई अच्छा या अपने पसंद से कोई अच्छा सा सॉन्ग लेकर दीजिए। चलिए, आपके जो पसंद है वो भी काफ़ी प्यारे गाने हैं, आप ही के पसंद से हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी मैसेज पहुँचा हुआ है और मैसेज में लिखा गया है कि अंकुश कुमार पता गोपालगंज से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आप लोग से हम बार बार कहते हैं कि आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं उस नंबर पे आप मैसेज करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप, हम और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बने रहे हमारे साथ। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं पहले पसंद की फरमाइश प्रीति रैदास की, रेडियो 106.4 FM पे।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे सुन रहे थे अभी हम सभी। और ये मैरिज एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ था प्रीति रे दास की तरफ से। और चलिए आपकी माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और उनकी लंबी आयु हो। आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ मैसेज पहुंचा हुआ तो मैसेज को शामिल करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग। मैसेज में लिखती हैं, हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी आपके शो से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए और मुझे भी आज सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का बोल है प्यार बिना चैन का, भोजपुरी सॉन्ग है, सो प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर हैं सब, प्रियांशी, पूजा, कुछ प्यारे प्यारे रेडियो दोस्त हैं, रानी, रजनी, संतरा, कुशवाहा, सविता चौहान, आशा चौहान, नीतू सिंह, निशा सिंह, निशा भारती, सबीना अपी, गुड़िया अपी, शिल्पी सिस्टर, इरफान भैया, कमरान भैया, हरकेश भैया, शमीर भैया, गुलाम भैया, दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और इस गाने के फरमाइश मैसेज करती हैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनू बाबू, कैसे हैं? अभी हम भी आपके साथ जुड़ गए हैं तो बिल्कुल बढ़िया है। और अपना बताएं, फिलहाल स्वागत है आपका। और कहते हैं कि साथ में मैडम जी भी, बिल्कुल आप दोनों बन रहे हैं हमारे साथ। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए। चलिए आपको धन्यवाद है, रेडियो रिमझिम के साथ इस प्यारे से गाने को एंजॉय करने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है? शमीना, सबीना एंड अफसाना फ्रॉम दुलुलिया से, तो बिल्कुल बढ़िया, आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया कि नमस्ते सर, मैं राजेश प्रजापति बबरखा जौनपुर से, सर एक गाना चला दो। गाने का बोल, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और बने रहो हमारे साथ। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और पवन सिंह की आवाज़ में गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं रोशनी की पसंद की फरमाइशी सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पे, प्यार बिना चैन कहाँ।

रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है, लिखा गया कि थैंक यू सो मच, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि कैसे हैं सर, तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और गाने मैसेज करती हैं सरिया फ्रॉम अमो मोजम से। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सर मेरा गाना सुना दीजिए, बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, मुझे भी सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग का बोल है तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और मैसेज करती हैं सोनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि लिखा गया है कि किकरा ला प्यार बिना चैन नहीं खे, पौन जी का मैडम ज्योति के बिना या दूसरा खातिर बेचैन बानी अपने ही, तो और मिसेस के करता नहीं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। और आगे मिसेस पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। चलिए राजेश जी की फरमाइश प्ले करते हैं और गाने के फरमाइश करते हैं, बीत गए जो लम्हे लौट के ना आएंगे। राजेश जी आप एंजॉय करिए अपने गानों के साथ रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तब रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमसीएम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर गाना सुनाने के लिए। तो आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझिम सुनने के लिए राजेश जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाँ भैया मुझको गाना सुनना है, मैं बुलेट चौधरी तीन फेड़ियाँ से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, लेकिन गाने की फरमाइश तो पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल ही आपकी फरमाइश हम सुनाए थे। सो सप्ताह में एक ही बार गाने की फरमाइश करने का मौका मिलता है क्योंकि यह बहुत कम समय का कार्यक्रम है और आप लोगों की जनसंख्या थोड़ी अधिक है, जिसके कारण साप्ताहिक फरमाइश रखा गया है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि बहुत सुंदर सॉन्ग अच्छा लगा, और इस मैसेज को करने वाले वीरेंद्र गुप्ता भैया। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय। तो फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, मैसेज करती हैं शिल्पी विद्वरवा से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सुनो बाबू, मैं नंदनी कुमारी और सॉरी हाय सुनो भैया, मैं नंदनी कुमारी और मुझे गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, मुझे गाना सुनना है जिसका बोल है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस मैसेज को करते हैं दिलीप राम शिहरवा से, तो बन रहे हमारे साथ, गाने की फरमाइश भी पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं सोनी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। और ये गाने इन्हीं की पड़ोसन के आवाज़ों में अनु दुबे के। तो चलिए सुनते हैं हम सभी रेडियो एमझिम 94.4 FM पे।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। काफ़ी प्यारा सॉन्ग रहा अनु दुबे की आवाज़ में और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे गाने के फरमाइश और कुछ फीडबैक पहुंचे हुए हैं। लिखा गया है कि काफ़ी सैड सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। लिखा गया है कि शुक्रिया दिल से मेरा सॉन्ग प्ले करने के लिए। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो एम सी एम सुनने के लिए और आगे मैसेज अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं और इस गाने के फरमाइश करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया खिकरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से और इनके तरफ से गाने की फरमाइश

गाने की फरमाइश किया गया है फिल्म लुटेरा से लता जी की आवाज़ में सॉन्ग नींद हमारी खो जाती है मोहब्बत टू, डेडिकेट सभी श्रोता और रोशनी शफाक हिना सबीता सबीना गुड़िया शबा निशा सलोनी शाहजहाँ ब्यूटी नीतू सिंह और हाजरा खुशी और हमारे साथ आपको भी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे और सुनते हैं आपके पसंद के गाने। हम सभी रेडियो रमझम 90.4 एफएम पे मैसेज तो आते जा रहे हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि आज सुनो भाई हो तो बिल्कुल आपके द्वारा कहे गए मैसेज को हम देख रहे हैं और आपके भी मैसेज जो भी गाने के फरमाइश से पूरा करने की कोशिश है। एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी की जा रही है। आप बन रहे हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो रमझम 90.4 एफएम पे।

काफी प्यारा सॉन्ग ओल्ड इज गोल्ड सुन रहे थे हम सभी लता जी की आवाज में और 90.4 FM पे। शो SMS फरमाइश का चल रहा है और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँच रहे हैं। आगे गाने के फरमाइशों वाला मैसेज करते हैं दिलीप राम जी और गाने की फरमाइश करते हैं कसम मेरा बड़ा नाम होगा। राम कसम मेरा बड़ा नाम होगा सुनाना चाहते हैं आपको बबीता जी, सबीता जी और सरफुद्दीन भाई, पंकज भाई, राघव भैया जी को और गुड़िया जी, सफाक जी, काजल जी, संतरा जी, सलेहा जी, ससीदा जी, आशा जी, सबीना जी, साजदा जी, रानी जी, रोशनी जी, पायल जी, गुलफाम जी, नेहा जी, हिना जी, शाहजहाँ जी, ब्यूटी परवीन जी, गाटा शर्मा जी, सगीर अंसारी जी, मुकेश भाई जी, तूफानी जी, आज़ाद अंसारी जी, रोजाद्दीन भाई, अफसर भाई, जबीद आलम जी और उपेंद्र भाई जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, वीरेंद्र भैया जी को और सभी दोस्तों सखियों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और आप भी इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रेमछेम 90.4 FM पे। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचा, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, थैंक्स भैया मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए। और आगे लिखा गया है कि सोनू बाबू शुक्रिया गीत सुनावे खातिर। और चली रघो के भी धन्यवाद बा और सुनत रहीं, इंजॉय करत रहीं। मैसेज करत रहनी लवली गुप्ता और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है मुकेश साहनी, भैरवगंज वेस्ट चंपारण मोहरा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आप बन रहे हमारे साथ, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और दिलीप जी की गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी 90.4 FM पे।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और दिलीप जी की फरमाइश अभी हम सुन रहे थे, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और आगे मैसेज में लिखा गया है कि क्या बात है दिलीप जी, प्यार में नाम कीजिए पर दारू पीकर बड़ा नाम मत कीजिए। अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं भाई। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि ओहो कितना बड़ा नाम हो गया है। वैसे नाइस सॉन्ग, थैंक्स मुझे सुनाने के लिए। और मैसेज करती है रोशनी मानिकपुर से, और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और मैसेज करने वाले मंकीश साहनी भैरोगंज वेस्ट चंपारण से, और मोहरा फिल्म का गाना ना कदरे की धार ना मोतियों की हार फिर भी कितनी सुंदर है गाने के फरमाइश करते हैं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो चुका है। तो आप इंजॉय करें, और जो भी श्रोतागण आज छूट जा रहे हैं उनकी फरमाइश अगले सप्ताह पूरा करें।

की कोशिश रहेगा और आप फिलहाल के गानों के साथ एंजॉय करते रहें, सुनते रहें रेडियो रेमछिम 90.4 FM, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्ण ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्ण ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्शन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
2: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial scale coal to ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Center and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Drairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights, including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency, NTA, today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026.

0: But the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy. And yet, Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
1: In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-final of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.
2: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर. आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण. रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से. आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं. सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें. उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर.

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
3: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूं। आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-11 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
4: हेलो
5: हेलो,
4: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
5: हेलो सर, आप
4: नमस्ते।
5: हेलो,
4: हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका।
5: शालू कुमारी।
4: और कहाँ से हैं आप।
5: रिसेप्शन से चला।
4: ओके, क्या हाल है आपका।
5: ठीक है, कर रही।
4: मेरा भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा है आजकल
5: पढ़ाई। अच्छा, क्या होगा।
4: चलिए बढ़िया है, पढ़ाई चल रही है कि अभी छुट्टी है।
5: हाँ अभी छुट्टी है।
4: ओके, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
5: भाई तू मेरी जान है।
4: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है।
5: मेरी सिस्टर को और रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को और आपको।
4: ओके, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत
1: हेलो।
0: स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।
1: उसको गाना सुनना है।
0: जी गाना सुनाऊंगी। नाम बता दीजिए अपना।
1: मैं देखी
0: क्या हाल है आपका?
1: ठीक है आपको बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है। बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: पूरी गाना आज नहीं बजता।
0: जी भोजपुरी गाना सुनता है। बताइए
1: श्रीलाल का गाना कोई भी सुना दीजिए।
0: खेसारी लाल का गाना आप ही बता दीजिए आपको कौन सा उनका गाना अच्छा लगता है।
1: भक्ति में कोई भी सुना दीजिए। भक्ति वाला।
0: ओके। और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: हाँ सुनाना है।
0: बता दीजिए किसे।
1: बेटी है उनको।
0: तो गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है।
0: रेडियो रमझिम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: कैसे हैं?
7: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
6: हम भी अच्छे हैं। क्या हो रहा है? और सुबह मौसम गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बहुत काफी गर्मी।
7: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है।
6: डेली टेम्परेचर इतना ना हाई हो रहे हैं कि बाप रे बाप, घर में से निकला हुआ मुश्किल हो जाता है। और सब बताइए, सब अच्छा है ना?
7: जी और सब बढ़िया है। आप बताइए, आप कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं?
6: सब अच्छे हैं जी, आप लोग का दुआ आशीर्वाद से सब अच्छा है। बढ़िया है। गाना सुनना है दिल ने तुझे याद किया, यही सुनना है।
7: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: जितना सुनने वाले हैं उन सभी को भी है। और आगे
7: जी जी, एक बार अपना नाम बताते
6: हैं। जी विकास।
7: ओके, तो फिर गाना प्ले करते हैं
6: जी,
7: सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो, स्वागत है आपका रिवेंजन 90.4 FM में। नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: क्या नाम है आपका?
1: रितेश कुमार, अम्मा मॉडल।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: अम्मा मॉडल।
0: अच्छा, क्या हाल है आपका?
1: ठीक है, आप बताइए।
0: मेरा भी बढ़िया है।

0: हैं आप? पढ़ाई कर रही है? कौन सी क्लास में है?
1: तीन तारीख
0: से। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
1: बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया है, मन लगा के पढ़िए।
0: तो बता दीजिए अभी कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: मूवी वाला गाना चल सकता है
0: जी? सारा मूवी का गाना चल सकता है। बताइए कौन सा मूवी का आपको सुनना है?
1: स्त्री मूवी का आज की यात्रा वाला।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: सबसे पहले आपको और मेरी माँ को और मेरी मम्मी को। पूरी रेडियो रंजन।
0: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
1: ठीक है,
0: सुनते रहें सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
4: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम जी।
7: नमस्ते,
6: क्या हो रहा है?
7: कुछ नहीं आप... बस और आपसे बात।
6: भारती जी बोल रही ना आप?
7: हाँ।
6: आपका नियमित होता हूँ मैं तो रिमझिम के कार्यक्रम, सुनते हैं हम तो रोज 5 बजे से 7 बजे तक ले।
7: जी
6: और क्या, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कैसी हो?
7: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
6: हम तो बढ़िया है मैडम जी। अभी तो क्या है, बारिश हो रहा है तो उधर
7: बारिश हो रहा है।
6: हाँ बारिश हो रहा था श्याम घर।
7: अच्छा जी, तो थोड़ा इधर भी भेजा कीजिए, इधर तो बहुत गर्म।
6: आप तो उधर भेजेंगे ना, बारिश आएगी आपके उधर भी आएगी बिहार में भी बारिश।
7: देखिए अब इंतजार तो कर ही रहे लोग गर्मी, लेकिन इतना ज्यादा है कि क्या ही बताए आपको।
6: हाँ सही बोल रही आप मैडम जी, भेजेंगे आप उधर भी भेजेंगे।
7: जी बिल्कुल भेजिए।
6: गाना सुनना है?
7: बता दीजिए कौन सा गाना।
6: गाना सुनना है मुझे, दिल का क्या कसूर।
7: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
6: डेडिकेट है ना ये वाला सॉन्ग।
7: बता दीजिए किसकी, किसको?
6: जयरे की गोमान सिंह धाकड़ है, चरण सिंह धाकड़ जी है, सुनील साहू जी है, मकसूद अंगड़ से, इनके लिए और आपके लिए डेडिकेट गाना ये वाला है। मिलने की तुम कोशिश करना, बाधा कभी नहीं करना, बाधा तो टूट जाए। कुमार सानू और आशा भोसले जी का आवाज में जी वाला गाना।
7: जी जी,
6: और क्या जी वाला सुनना।
7: ओके, तो गाना प्ले करें?
6: प्ले कर दीजिए।
7: तो सुनते रहें रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माइंड चॉइस में।
0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: क्या हो रहा है? मैं
1: कुछ नहीं, बस बात हो रहा है आपसे।
0: खाना हो गया है?
1: खाना हो गया, आपका हो गया?
0: अभी खा लिए।
1: सब तो बढ़िया है। और बताइए, और सब कैसा है? सब कोई कैसे है घर में?
0: सब ठीक है घर में।
1: तो बताइए, कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: गाना नहीं है तो अर्थी है कि चार्जर कतई लगा ले लूँ।
1: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
0: हाँ, आपको और पहली सुनर को।
1: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone ring, they bajte hai, to kehte hai hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
5: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: कैसे हैं मैम?
5: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
6: बिल्कुल ठीक हूँ। गोपालगंज का मौसम का क्या मिजाज है?
5: गोपालगंज का मौसम तो बहुत ही गर्मी पड़ रहा है यहाँ
6: जी। इधर भी हमारे झारखंड में भी, देवघर जिला में भी बहुत गर्मी है मैम। तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर तापमान है।
5: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। आप देखिए क्या होता है, बारिश कब होता है।
6: हाँ, कल लगी जैसे बारिश होगी, लेकिन यहाँ हम लोग के तक नहीं पहुँची।
5: मौसम तो बना रहा है कभी कभी बारिश के जैसा, फिर पता नहीं क्या हो रहा है। बताइए आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है
6: मैम? जानी दुश्मन फिल्म का गाना सुना दीजिए, पुराने जानी दुश्मन जो शत्रुघ्न सिन्हा का है।
5: कौन सा सॉन्ग?
6: ये किशोर कुमार, आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने जो गाया है। गीत के बोल बता रहा हूँ मैम। गीत के बोल है, सुन भय साधो बोल भय माधो।
5: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
6: जी, सबसे पहले मैम आपको मैं सुनूंगा, रेडियो के जितने लिसनर है सब सबको सुनेंगे, और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, विष्णु प्रसाद यादव हैं, कृष्ण कोल हैं, मदन कोल हैं, राजकुमार हैं, जुगल कोल हैं, अमली कोल हैं, को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
5: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे सबके साथ। रेडियो रंजन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
2: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
2: हमको तो पसंद है होंगे, बस चेहरा कैसे धरती।
1: अच्छा हाँ जी, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, आप बताइए।
1: हम भी ठीक हैं। क्या हो रहा है अभी?
2: अभी बैठे है, बहुत ज्यादा धूप है।
1: धूप तो बहुत ही तेज है आज, तो गर्मी और ज्यादा लग रहा है।
2: बहुत ज्यादा, वही घर में काम लगा हुआ है तो सोच रहे थे कुछ करे, तब तक इतना गर्मी है कि बैठे खाना बैठ के।
1: बताइए आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: आज गाना सुनना है नीलकमल सिंह का सैड सॉन्ग। कोई भी
1: नीलकमल जी का कोई भी सैड सॉन्ग?
2: कोई भी सैड सॉन्ग हो।
1: आप नहीं बताइएगा कि आपको कौन सा सॉन्ग सुनना है?
2: काजल राघवानी अपने जो डांस किया है ना, वो वाला।
1: और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
2: डेडिकेट तो अपना ये लीजिए ना, मेरे सामने जी से बात। बोले बोले बोले। हाँ नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: सब ठीक है, अपना सुनाइए।
1: ठीक है,
2: ना हो गया
1: जी? हाँ मेरा हो गया, आपका हो गया?
2: चलिए ठीक है, समझे।
1: ठीक है, फिर गाना प्ले करती हूँ, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रंजन में कॉल करने।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज जिम के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
2: आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। बीच में देर बाद आप मिली है। ये रेडियो बहुत मुश्किल हो गया है रिम जिम।
1: क्यों?
2: इसलिए मुश्किल हो गया है कि बहुत देर से लगाना पड़ता है।
1: अच्छा,
2: बहुत महंगा हो गया है रेडियो रिम
1: जिम। जी कॉल तो आ ही रहे हैं।
2: हाँ कॉल तो आ ही रहा है।
1: कैसे हैं आप?
2: हाँ जी बहुत मैं अच्छा हूँ और शुक्रिया है कि आपसे मिल गई, नहीं तो अब छोड़ देने वाला था मैं।
1: अच्छा कि हमने कॉल उठा लिया आपका।
2: उठा लिया नहीं तो बस एक ही मतलब शुक्रवार को करते हूँ।
1: अच्छा जी। और सब बढ़िया है?
2: और यहाँ की गर्मी बहुत पड़ रहा है।
1: जी गर्मी तो बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है।
2: गोपालगंज में पानी नहीं है, हालत खराब हो गया, रात को भी नींद नहीं आता है।
1: जी
2: तो अभी इसी नींद के हालत में जो है गाना कैसे छोड़ दिया जाए सुनना।
1: जी गाना से थोड़ा राहत मिलता है।
2: हाँ गाना से राहत मिलता है कि रेडियो लेकर बैठो और सुनते रहो, पसीना निकालते रहो।
1: गर्मी है तो क्या कीजिएगा।
2: अरे बाबा इतना गर्मी कभी नहीं पड़ा था, हमको लगता है यही। बहुत प्यार मैं तो मुझे गाना सुनना है।
1: बता दीजिए।
2: दम है तो मुझको थाम ले ऐसा कोई कविता कृष्ण मूर्ति का गाया हुआ था उसका। दम है तो आना मुझको थाम ले। ऐसा ही है तो वो भी कहीं मैं सुन रहा था तो सोचा कि आज ये भी फरमाइश करूंगा गाना।
1: ओके
2: और सब सुनाइए कैसा है आपका भी?
1: और सब बढ़िया है तो गाना शुरू करते हैं।
2: ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
1: अच्छा है।
0: तो क्या हो रहा है अभी?
1: अभी फोन लगा रहे आपके पास।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना सुनना है राम तेरी गंगा मैली।
0: और गाना इसका कौन सा?
1: गाना सुनता है सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे सुन लिया।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को सुनाना भी है
1: आपको? जितने रेडियो रेंज मार्जे सब है, सब श्रोता दोस्त है सबके साथ।
0: ओके, तो गाना प्ले करें?
1: जी मैडम जी।
0: ओके, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहें सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैडम जी।
5: नमस्ते,
6: कौन भारती जी बोल रही है कि सोनी जी बोल रही है?
5: पहचानिए,
6: मेरे को तो भारती जैसी आवाज लग रही है।
5: हाँ जी
6: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू बोल रहा हूँ मधुसूदनगढ़ से।
5: हाँ हाँ, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया है बहन जी, शादी में आए, इंदौर आए, शादी है रिश्तेदारों में, तो इंदौर से कॉल हो रही है, आपसे इंदौर से बात हो रही है।
5: जी तो अभी क्या हो रहा है?
6: अभी कुछ नहीं दीदी, अभी तो खाना माना तैयारी चल रही, खाना खाएंगे।
5: जी जी,
6: आपने खा लिया क्या?
5: जी हमने खा लिया।
6: अच्छा, और दीदी आज मेरी फरमाइश आएगी,
5: बता दीजिए,
6: साजन फिल्म की।
5: और कौन सा सॉन्ग?
6: ये सॉन्ग है ना, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये गाना मैडम जी मेरी पत्नी को डेडिकेट है सबसे पहले तो, और आपको भी है। और हमारे दोस्त हैं मांगीलाल धाकड़ है, राम नरेश प्रजापति है और गोपाल ओझा है, ये सभी को ये गाना डेडिकेट है, जितना भी ये फरमाइश सुन रहे हैं उनको।
5: जी बिल्कुल, तो गाना प्ले
6: जी जी धन्यवाद,
5: तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहे रेडियो 90.4 FM।
6: धन्यवाद।

0: हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 एफएम में।
0: गाना सुनवा दीजिए।
1: जी गाना सुनाऊंगी, नाम बता दीजिए अपना।
0: नाम संतोष महतो।
1: और कहाँ से हैं आप?
0: बैकुंठपुर, डिगवा दिगौली बैकुंठपुर से।
1: तो बता दीजिए कौन सा सॉन्ग सुनना है आपको।
0: गाना सुनवा दीजिए फूल और कांटे का।
1: गाने का नाम?
0: कौन सा सुनवा दीजिए?
1: कांटे का कोई भी सॉन्ग।
0: हाँ जी।
1: ओके, सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
0: हाँ जी,
1: बता दीजिए।
0: सबसे पहले आपको पूरा जुड़ा जितना लोग है, अभी बच्चा, सब लोग को सुनवाना है।
1: ओके, तो कैसे हैं आप?
0: अभी तो हम लोग पंजाब में हैं।
1: ओके, तो हाल चाल बढ़िया है?
0: हाँ जी बढ़िया है।
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक है,
1: सुनते रहे रेडियो प्रेम जी 90.4 एफएम।
0: ठीक है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
4: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी नमस्कार।
7: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो माय चॉइस में।
6: वापसी जी, हम विशाल मास्टर बोल रहे हैं धना से।
7: जी जी,
6: बहुत बिजी रह रही है अभी तक। 12:30 बजे रिकॉर्डिंग होगा काज, तो और सब बताइए क्या समाचार है।
7: मेरा बढ़िया है, आप अपना बताइए।
6: अरे हम लोग का तो देख ही रहे, मशीन चल रहा है, आपका कार्यक्रम चल रहा है, 9 बजे से चलता है दिन भर।
7: जी जी, तो मौसम कैसा है अभी?
6: अरे कहिए मत, इतना धूप है ना कि जल जाइएगा। उधर से पानी उनी भेजिए, बल्कि आपके तरफ पानी ज्यादा पड़ता है, बरखा ज्यादा होता है उधर।
7: अभी तो हम लोग के यहाँ भी धूप हुआ है, देखिए कब बारिश होता है।
6: ना उधर बहुत बारिश होता है, हम लोग की तरफ भी। हम लोग इधर दक्षिण बिहार रोहतास जिला में है ना, हम लोग की तरफ कम होता है, उधर ज्यादा होता है।
7: बहुत गर्मी होता है, हम भी गए हुए उधर, बहुत गर्मी होता है।
6: तो गाना सुनवा दीजिएगा, सनम बेवफा मूवी।
7: कौन सा सॉन्ग?
6: बे इरादा नजर मिल गई तो, बे इरादा नजर मिल गई तो, हाय मुझे। ये वाला है ना? वही वाला है। और सबसे पहले सुनवाएंगे आपको, और हम लोग सुनेंगे रोशन टेलर में जो काम करते हैं हम लोग।
7: तो फिर गाना प्ले करते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM।
6: जी नमस्कार।
7: नमस्कार।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो माई चॉइस में।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: मैम कैसी हैं आप?
0: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
1: हम बिल्कुल मस्त हैं, जिंदा हैं।
0: जी, ऐसे ही होना चाहिए।
1: जी।
0: अभी क्या हो रहा है?
1: अभी तो हमारे घर देना होना मतलब हाँ पंखा चल रहा है, लोग गर्मी की छुट्टी मिला है ना।
0: तो भोजन हो गया आपका? अच्छा
1: जी भोजन हो गया, अब बनेगा खाना दोपहर का।
0: जी, बता दीजिए।
1: मैम आपकी तरफ मौसम कैसा हुआ है?
0: मौसम तो बहुत गर्मी पड़ रहा है।
1: जी, इधर भी वो पता ना टेम्परेचर कितना यार, 40 डिग्री है कि कितना डिग्री है, बहुत गर्मी। सुबह और शाम बुझाई नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या
0: गर्मी
1: करो।
0: बढ़ गया है थोड़ा। बता
1: जी, गर्मी बढ़ गया। तब गाना सुनना
0: दीजिए कौन सा सॉन्ग।
1: है दारू का चमचा गए ना हो, ये गाना वही सुना दीजिए गाना। सबसे पहले तो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
0: ओके
1: सभी लिसनर को। जी
0: ओके, तो गाना प्ले करें?
1: जी प्ले कर दीजिएगा,
0: तो फिर गाना प्ले
1: बहुत दिन
0: करते
1: के
0: हैं।
1: बाद। जी प्ले कर दीजिएगा, बाद
0: जी, सुनते रहें रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो,
5: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन के कार्यक्रम हेलो मई चोरी।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: क्या हाल चाल है?
0: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
1: बस बढ़िया, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। आज
0: गर्मी तो बहुत ज्यादा ही है।
1: विकास कुमार बोल रहा हूँ।
0: और सब
1: बहुत ज्यादा
0: गर्मी तो बहुत काफी है आज।
1: अभी थोड़ी देर पहले गोपालगंज हम गए थे, बहुत ज्यादा गर्मी,
0: धूप भी वैसे ही निकला हुआ है।
1: एक हाथ में मेरी लेडी से बैठी हुई थी, वो पैसा निकालने के लिए गई था, तो बोले कि चलो जल्दी चलो, धूप लग रहा है बहुत ज्यादा।
0: चलिए ठीक है, धूप में घर में रहिए, धूप ज्यादा है।
1: और बताइए, खाना उना खा लिया मैडम?
0: जी मेरा हो गया, आपका हो गया?
1: 9 बजे हम लोग खा लेते
0: हैं, तब तो अच्छा है।
1: आज गाना सुनवाइएगा हमको, सॉन्ग सुनवाइएगा क्रांति फिल्म का।
0: कौन सा सॉन्ग?
1: तो क्रांति फिल्म का एक सॉन्ग नहीं है, झूठ बोले कौवा काटे काली कौवे से, ये वाली सुनवाइएगा, मस्त गाना है एकदम।
0: ओके, और ये सॉन्ग किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: सबसे पहले आपको, जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सब, ये गाना अपने लड़की के लिए, अपने भाई के लिए, बस एक मेरा दादाजी है।
0: तो फिर गाना प्ले करते हैं,
1: ठीक है,
0: सुनते रहे सबके साथ।
1: और सब बढ़िया है ना?
0: जी जी बिल्कुल, मेरा बढ़िया है।
1: चलिए, कल भारती जी का चल रहा था ना,
0: सुनते रहे रेडियो रंजन 90.4 FM। झूठ

0: हाँ हेलो, नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैं नौशाद मोबाइल विक्रमगंज दोहरा शहर।
1: क्या हाल है आपका?
0: बहुत बढ़िया है, अपना बताइए।
1: मेरा भी बढ़िया है।
0: गर्मी हो रहा है उधर?
1: जी जी गर्मी तो बहुत ही है।
0: तो आज विक्रमगंज में और कारागार में और ये रोशन टेलर धनाव के जो है ना एसाद मास्टर गाना सुनवाना चाहते हैं सिर्फ तुमका। टाइटल सॉन्ग सुना दीजिएगा। बहुत दिन के बाद आपके पास कॉल लगा, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि कॉल लगेगा, कब लगेगा, कब तक बज जाएगा गाना?
1: गाना 2 दिन के बाद बजेगा आपका।
0: 2 दिन के बाद बजेगा? अच्छा ठीक है मैम,
1: तो फिर गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो
4: तो श्रोताओं अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रहे हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: मिला।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: इतना सवाल एक बार पूछ लेबू, पहले अपन बताओ तो हम अपन बताओ तनी।
1: अच्छा तो सुन लो, खोल के ना बताई, विचारा के बाद इशारे में समझ ली है।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।